0: यू महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।
1: कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
2: नारद जी आए हैं, देवी लक्ष्मी आई हैं, बाबा भोलेनाथ भी आए हैं। बाबा भोलेनाथ जी पूरे परिवार के साथ आए, लेकिन अब इनको वहां जगह कौन देगा जाने के लिए? इतनी भीड़ भाड़ में कोई नहीं देखता कौन वीआईपी है कौन नहीं है, सबको ही लगता हम ही आगे बढ़े। दर्शन नहीं करने दिया। बाबा जी ने सोचा अब तो दर्शन नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, दोबारा दर्शन करने आएंगे। तो बाबा भोलेनाथ दोबारा दर्शन करने आए, कब? जब भगवान 4 दिन के थे। बड़ा अद्भुत वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। आज ठाकुर जी 4 दिन के हैं, 4 दिन का लाला है, बड़ा सुंदर रूप है। भोलेनाथ जी पहुंच गए, आकर के मैया के द्वार पर सबसे पहले कैलाश से निकले हैं बाबा भोलेनाथ। कैलाश से निकल ही रहे थे कि इतने में ही पार्वती जी ने आवाज दिया, अरे अजी कहां जा रहे हो? माताओं बहनों का ये थोड़ा सा स्वभाव होता है, जब पतिदेव किसी काम से बाहर निकले ना तो भले बात नहीं करेंगे, लेकिन जब निकलने ही वाले होंगे तब जरूर कहेंगे, अजी जा रहे हो, अच्छा आते टाइम 2 किलो आलू ले आना। तो चलते टाइम मैया टोकती जरूर है। तो भोलेनाथ जी बोले, कहीं नहीं, वो क्या है ना, लाला का जन्म हुआ है नंद महल, तो उनके दर्शन करने जा रहा हूं। पार्वती जी बोले, ऐसे दर्शन करने जा रहे हो? रूप देखा अपना, कोई घुसने नहीं देगा? आनंद बाबा की सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहती है, आपको मालूम है वहां कोई घुस नहीं सकता बिना आज्ञा को। ऐसे रूप से आपको कोई घुसने देगा वो तो भला हो, जो ब्याह पे आप ऐसे आए हो, मेरे माता पिता ने आपको ऐसे ही ब्याह दिया। क्योंकि भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ जी है, ब्याह में देवताओं ने खूब कहा, महाराज थोड़ा आज तो थोड़ा सा ड्रेसअप चेंज कर लीजिए। जैसे कैसे कर लेंगे, किसी को अपनी छोरी देनी हो तो ऐसे ही दो जैसे हम हैं, हम किसी के लिए नहीं बदलने वाले। वही सांप सब पूरे गले में लटकाए, बोले महाराज कम से कम घोड़े पे तो बैठ जाओ, और कुछ नहीं तो कम से कम घोड़े पे बैठ जाओ। बाबा भोलेनाथ कहते, हमको घोड़े वोड़े की जरूरत नहीं, हमारा नंदी है, यही हमारा साथी और यही अंत तक साथ देगा, हम तो इसी पे बैठ के जाएंगे। नंदी पे बैठ गए, और नंदी पे भी बैठे उल्टा मुंह करके, इधर की तरफ मुंह करके, और बारात लेके जा रहे। देवताओं ने सोचा कि अजीब, ये तो शंभू हैं, इनको तो ना सम्मान से मतलब ना अपमान से, लेकिन अपमान तो हमारा होगा कि देखो देवता किसकी बारात में आए। इसलिए देवताओं ने क्या किया, बोले ये पीछे आते रहेंगे, हम सब पहले पहुंच जाते, और दूल्हा को छोड़ के ही सारी बारात आगे बढ़ गई। बाबा भोलेनाथ ने देखा ये तो छोड़ के चले गए हमको, अब हमारी बारात का क्या होगा? भोलेनाथ जी ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास बरातियों की कमी नहीं। उठाया डमरू और एक बार बजाया, डमरू बजाते ही दुनिया में जितने शमशान के भूत प्रेत हैं सब बाबा भोलेनाथ के सामने प्रकट हुए। बोले कहिए महाराज, बोले कहिए नहीं, तैयार हो जाइए, बारात में चलना है। तो बोले महाराज हम तो तैयार हैं एकदम। और कैसे तैयार है? कोई है किसी का मुंह ही नहीं है, कई है किसी के 4-4 हाथ हैं, किसी के 10-10 पांव हैं, ऐसी अद्भुत बारात बाबा भोलेनाथ चल पड़ी। अब जैसे पहुंचे, बारात पहुंची हिमालय राजा के घर, तो सारी सखियां और सारी माताएं बाहर खड़ी थी आरती थाल लेके, बोले बारात आ रही है, दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले बारातियों की लाइन में चल रहे इंद्र देवता, लगा अरे वाह वाह वाह क्या बात है, कितना सुंदर दामाद मिला है, इसका रूप तो देखो। देवता बोले नहीं जी नहीं, ये दामाद जी नहीं, ये दामाद जी तो पीछे आ रहे हैं, ये तो दामाद जी के दास हैं। सखिया बोली, जब दास इतना सुंदर सौंदर्यवान है तो मालिक कितना होगा? तो बोले चिंता मत करो, आ ही रहे, देख ही लेना आप, वो भी बस पीछे ही पीछे बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर आया कामदेव, बड़े बड़े सौंदर्य को पछाड़ दे ऐसा कामदेव, फिर आरती की थाली लेके खड़ी हो गई, मैना जी कि दामाद जी आ गए। दामाद बोले ये भी नहीं है दामाद जी, ये तो बस उनके यहाँ थोड़ा बहुत कोई झाड़ू पोछा का काम कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ। अच्छा अब तो बस बस आ जाए दामाद जी, कैसे भी एक बार झलक देख ले कैसे दामाद जी। नारद जी ने ऐसा कौन सा अद्भुत दामाद बता दिया हमें। नारद जी ने ही विवाह का प्रस्ताव रखा था। अब देवताओं की बारात खत्म हुई और भोलेनाथ जी की बारात हुई चालू। डम डम डम डम करते करते सारे पहुंचे। बोले दामाद जी कहाँ है? बोले दामाद जी वो देखो नंदी पे उल्टे बैठे। दामाद जी से कहिए उतरे तो सही। दामाद जी उतरे और उतर के सासू जी के सामने आए और जैसे मैना ने देखा कुछ बोल नहीं पाई और बस आरती की थाली हाथ से छूट गई और वहीं की वहीं बेहोश हो गई। ये नारद ने क्या? अब भोलेनाथ जी झांक के देख रहे हैं, साइड वाले से पूछते हैं माता जी कौन है? अरे माता जी नहीं आपकी सासू जी है। बाबा बोले सासू कौन सा पदार्थ होता है? ले बाबा पूछो मत, बड़ा अद्भुत पदार्थ होता है, आपको इन्हीं से लेना देना है, आगे यही अपनी छोड़ी देंगे। अपने ब्याह में ये नहीं बदले। पार्वती जी कह रही हैं आज जब मिलने जा रहे हो ठाकुर जी से तो आज तो कम से कम अपना रूप बदलो। बाबा को लगा कि बात तो ठीक कह रही है पार्वती, क्या पता कोई घुसने दे नहीं घुसने दे। बाबा ने तुरंत कपड़े बदले, धोती पहनी, पगड़ी बांधी, गले में मोतियों की माला पहनी। चलने ही वाले थे कि तभी अपने गले से नाग उतार रहे थे, तभी एक नाग फुसफुसा के हाथ जोड़ करके कहता बाबा जी एक प्रार्थना है कहूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। बाबा जी बोले हाँ बिल्कुल कहिए क्यों नहीं। ए बाबा जी छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन देखो हमने एक बात सुनी है संतों के मुख से कि जब भगवान के सामने जाओ ना भगवान का दर्शन करने तो दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे आप हो वैसे ही जाना चाहिए, और हो कुछ और बन के कुछ और जाओगे तुम्हारा उससे तो कोई लाभ नहीं है। बाबा भोलेनाथ बोले वाह मेरे बेटे ये तू ही मेरा सच्चा साथी और मैं तुझे ही छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ। बोले बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो पार्वती की बातों में फंस गया, तुरंत अपने वो कपड़े उतारे और वही भस्म लगा के मुंडों की माला पहन के और बाबा एकदम तैयार, अब तो यही रूप में जाएंगे, दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं कराए तो वो जाने। और लेके अपना त्रिशूल बाबा भोलेनाथ आ गए मैया के घर और आकर के जोर जोर से आवाज लगाई अलख निरंजन अलख निरंजन, अरियो मैया दरवाजा खोल दरवाजा खोल। मैया को लगा कोई द्वार पर साधु आए, गोपी को कहा दासी को कारी जरा जइयो देखियो कौन बाबा जी आयो द्वार पे। गोपी दौड़ के गई जाके देखा, बोला मैया ये कैसो बाबा जी आयो, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी देखियो होगो मैया तेने ना कभी देखेगी। ऐसो कौन सो बाबा जी आगो? बोले मैया तू ही चली जा। मैया बड़े भाव से गई द्वार पर, संत आए घर में तो इससे बड़ा क्या हो सकता। मैया पहुंच गई और जैसे मैया बाहर गई बाबा का दर्शन किया, बस मैया खड़ी खड़ी कांप रही है। बोले बाबा जी कहाँ ते पधारे हो? बोले मैया बड़ी दूर ते आए हैं, हिमालय की गुफा में ते आए। अच्छा बाबा जी कहाँ लोगे भोजन? पाओगे के सोना लोगे के चांदी लोगे, कहाँ लोगे? बोले अरे मैया तो को हमारे स्वरूप पे देख के लग रहे हो कि हमको सोने चांदी की जरूरत है। अरे मैया हमको सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, तो फिर बाबा कहाँ चाहिए? बोले मैया मैं तो बड़ी दूर से तेरे लाला को दर्शन करने आयो, मैं तेरे हमने सुनो है तेरे घर लाला भयो है, एक बार वाको हमको दर्शन करवा दे। भैया ने कही कहा बाबा आपके कहियो कहा मांगने आयो तू? बोले मैया मांग नहीं रहे हो, तेरे लाला के दर्शन की इच्छा लेके आयो। मैया बोली बाबा देख तू जो कहेगो मैं तो को दे दूंगा, तू कहेगो मुकु मैया एक बड़ो महल दे दे तो बाबा महल भी दे दूंगी, पर अपने छोरा के दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा बोले नहीं कराएगी क्यों नहीं कराएगी? भैया बोली, बाबा तेने अपनो रूप देखियो है, तेरे रूप पे देख के मो 80 बरस की बूढ़ी डोकरी है डर लग रहे है, तो मेरे 4 दिन के छोरा की का हालत होगी। इतनो छोटो सो लाला और तेरे सामने लाऊं कहां पर, तो तेरे गले में ते कोई सांप सपूरो उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गए तो। अरे मैया तू नहीं जाने, तेरो छोरा ऐसो वैसो नहीं है, सांपन ते नहीं डर पे वो। अरे मैया वो तो सांप पे सोवे है, और कहा बताऊं मैया, आगे भविष्य में चल के तो वो 100 पनवारे सांप के ऊपर नाचेगो। सांप तो वाके वश में रहे। मैया बोली, बाबा मेरो छोरा जो है ना ग्वारिया को छोरा है, सपेरा को छोरा नहीं है के सांपन पे नाचे हो। और वैसे भी बाबा है सके तेरे जहां तू आयो है, जहां लाला ते मिलने आयो है, शायद तू गलत एड्रेस पे आ गयो, कहीं और जानो चाहिए तो, क्योंकि मेरे घर में जो लाला रहे ना वो सांप वापन ते नहीं खेले, वो तो 4 दिन को लाला है, भूख लगे तो रोवे, हंसे, बात करे, तो बाबा लगे तू गलत जगह आ गयो। बाबा बोले, नारी मैया मैं गलत जगह नहीं आयो, एकदम सही जगह आयो, तेरे लाला के दर्शन करने आयो हूँ। मैया बोली, या ब्रज में बहुत लाला है, जा काई के भी दर्शन कर ले। बाबा बोले, ना दर्शन तो तेरे ही लाला के करूंगा। मैया बोली, देख बाबा तू हमको जाने नहीं है, हम बड़ी हटीली अम्मा है, एक बार अगर जिद कर ली ना तो फिर हमारी बात से हम हटेंगी नहीं। बाबा बोले, तो मैया तू भी हमको नहीं जाने, हम भी बड़े हटीले बाबा हैं, एक बार तेरे आंगन में धूनी रमा के बैठ गए ना तो सब दास दासियों को भी लगा दे तो भी हटेंगे नहीं। मैया यशोदा बोली, बाबा तू धूनी रमा च धूना रमा, मैं तो को दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले, कब तक नहीं कराएगी, कभी तो अपने छोरा को बाहर लेके आएगी दरवाजे पे ते तब देख लूंगो। मैया बोली, मेरे घर में एक नहीं कितने दरवाजे कितने द्वार है, कहीं ते भी ले जाऊंगी, पर जहां तू बैठे होगो वहां ते नहीं लेके जाऊंगी। बाबा बोले, अपने छोरा को खेलवे तो बाहर भेजेगी? बोले, नहीं भेजूंगी, या के ग्वाल वालन को भरन में ही बुला लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले, अपने छोरा को ब्याह तो करेगी? ब्याह करेगी, छोरा घोड़ी पे तो चढ़ेगो, तब तो बाहर निकालेगी घर से, तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली, छोरा क्वारो रख लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले, बड़ी हटीली अम्मा है यू, हम तो सोचे हम ही है जो कछे, पर ये तो हमारी गुरु है। अच्छो तुम्हें, हम भी यही बैठे, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हटेंगे नहीं, अंतिम सांस तक मर जाएंगे पर यहां से हटेंगे नहीं। मैया बोली, बैठो रे, मैं अपनो काम धंधो संभाल। और मैया भीतर चली। भोलेनाथ जी ने सोचा कि तो गड़बड़ है, मैया तो पूरी एकदम पूरे रोल में है, ये तो दर्शन नहीं कराएगी। फिर सोचा कि चलो जिनसे मिलने आए हैं थोड़ा सा उनसे भी तो अप्रोच लगा लें, कुछ क्या पता काम ही बन जाए। भोलेनाथ जी मन ही मन ठाकुर जी को कहते, अरे प्रभु ये कोई बात हुई, हम इतने दूर से आपका दर्शन करने और आप भीतर झुक के बैठ गए, अरे कुछ लीला करके कुछ एक बार कुछ करो ना। अब बेचारे ठाकुर जी बीच में फंस गए, एक तरफ मैया एक तरफ बाबा, किसकी माने। लेकिन बाबा, अरे बाबा अगर दर्शन करना है तो कुछ दिन बाद आ जाते, हमको थोड़ा बड़ा हो जान देते, कुछ बोलते, हम अपने पांव से चल के बाहर आ जाते, अब तो 4 दिन के कुछ कर भी नहीं सकते रोने के अलावा। बोले, हाँ प्रभु बस यही कर दो, यही करो, यही नाटक आपका सबसे बढ़िया रहे। बोले, क्या? बोले, रोना आरंभ करो। ठाकुर जी ने सोचा ये एकदम बढ़िया नाटक रहेगा, और श्री ठाकुर जी ने पल्ले में पड़े पड़े रोना आरंभ किया, रोना आरंभ किया, जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब देखो कभी कभी बच्चे रोते हैं ना, एक तो होता सचमुच रोना, एक होता नाटक करके रोना। एक नाटक करके जब बच्चे रोते हैं ना तो बड़े ट्यून में रोते हैं, इसका मतलब पक्का नाटक कर रहा है, वो एकदम रिदम में रोते, एकदम ताल में। तो ऐसे ही ठाकुर जी रो रहे हैं, अब जैसे रोने की आवाज आई तो आवाज बाहर गई। अब बाहर गई तो एक गोपी बाहर से भीतर आई। अरे मैया कहा कर रही है? तो कु तो लगे छोरा भी पाल लो नहीं आवे, देख छोरा रो रहा है और तू आराम से बैठी है। मैया बोली गोपी कहा करूं? बोले रो रहे हो है, तू याकू कछु दूध पिला, कछु माखन मिश्री खिला। मैया ने दूध पिला दियो, अब भी चुप नहीं हुए। मैया खिलौना लेकर के झन झन झन हिलाई, तब भी चुप नहीं हुए। मैया ने पल्ला में झुलाए, तब भी चुप नहीं हुए। गोपी तो चुप ही नहीं है, अब कहा करे। गोपी बोली मैया मोकु तो लगे तेरे छोरा पे काई गोपी ने नजर लगा दी, क्योंकि मैया भूखो होतो तो दूध भी पिला दियो चुप है जातो। मैया कछु खेल खिलौना चाहिए तो चुप है जातो, पर मैया ये तो काई गोपी ने नजर लगाई। मैया बोली अब कहा करे? बोले कहा करे का नजर उतारो या की? बोले कैसे नजर उतारे? बोले जा रसोई ते वो लेके आ, राई नून लेके आ भीतर। मैया गई, नमक लाई, राई मिर्ची लाई और लाला की नजर उतारी। आए की पलाए की, अड़ोसन की पड़ोसन की, भूतनी पिसाचनी, यहाँ की वहां की, इधर की उधर की, सब मेरे लाला के ऊपर से उतर जाए। अब नजर उतारी, अब नजर उतारने के बाद तो काना कम रोने चाहिए, पर ये और उल्टा डबल हो गए और जोर जोर से रोने लगे। गोपी अब कहा करे? ये तो अब भी चुप नहीं हुए। अब गोपी नए नए आइडिया देती जा रही है। बोली मैया देख दूध भी पिला दियो तब भी चुप नहीं भयो, या को खिलौना भी दियो तो भी चुप नहीं हो, नजर उतारी तो भी चुप नहीं भयो। अब तो मैया वो पक्की पतो चल गई बीमारी कहा है। मैया बोली कहा बीमारी? बड़ी भयंकर बीमारी है मैया। अरे पर बीमारी है का? बोले मैया मोकू तो समझ आ गई, या के ऊपर कोई भूतनी चढ़ गई। ओ मैया अब आप भूतनी को उतारवे के खातिर जब तक प्रयास नहीं करोगी तब तक ये छोरा चुप नहीं होगा। अरे गोपी भूतनी चढ़ गई है तो भूतनी कैसे उतरेगी? बोले मैं थोड़ी उतारूंगी, वाके नहीं तो कोई बाबा जी, कोई तंत्र मंत्र जानने वालो कोई बुलानो पड़ेगा, वो भूत उतारे हो। तो गोपी अब कौन को बुला के लाए? मैं तो काय को जानू नहीं हूँ, भूत प्रेत मो तो पतो भी नहीं कैसे रहे। गोपी बोले मैया टेंशन मतलब मैं हूं ना, अभी काय को बुला के लाती हूँ। तुरंत घर से निकली थी कि दरवाजे पर बाबा भोलेनाथ धूना रमा के बैठे। गोपी ने देखी नजदीक गई, बाबा का रूप भी कुछ तंत्र मंत्र जैसा ही है। तो जाके पूछी बाबा एक बात बताओ, तुमको भूत उतारने आते हैं? बाबा बोले पहले ये बताओ किसको चढ़े, उस पे डिपेंड करता है। बोले हमारी मैया है ना, वह को लाला है, चार दिन को बड़े जोड़ते रो रहे हो, हमने सोची कोई भूत चढ़ रहे हैं तो भूत उतारे वारो कोई बाबा चाहिए, तो तुम तो सीधी बात पे आओ ना, तुम बताओ तुमको आते हैं कि नहीं आते। बाबा बोले हाँ, मन में सोचा कि उधर से नाटक चालू हो चुका, तुम भी कर दो। बाबा जी बोले अरे गोपी क्या बात करती है तू, हमसे पूछ रही भूत उतारने आते कि नहीं आते? अरे गोपी मेरो तो नाम ही भूतनाथ है, मैंने ऐसे बड़े बड़े भूत उतारे हैं तेरे छोरा के ऊपर, इतनो कोई बड़ी बात है? अभी लेके आई चुटकी बजाएंगे और सब भूत उतर जाएंगे। गोपी राजी हो गई और खुश होती होती मैया, ओ मैया बाबा जी मिल गयो, भूत उतार देगो, एक मंत्र पढ़ोगे और सब भूत प्रेत उतर जाएंगे। पर कौन सो बाबा जी? बोले मैया कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यहीं तेरे आंगन में बैठो। मैया बोले ले कराई काम खराब, मैं कब ते वाते लड़ रही हूँ, दर्शन नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी, और तू वाकू जाके क्या ही के छोरा के भूत उतार दे। तेने वाको रूप देखियो है, कैसो रूप है वाको? गोपी बोली मैया तो वाके रूप ते कहा लेनो देनो, तू ला जाके लाला को लेके गोद में दूर ठाड़ी है जाइयो, नजदीक मत जाइयो, और बाबा दूर ते ही मंत्र फूंक देंगे और तेरो लाला एकदम स्वस्थ है जाओ। अब तो कु बाबा अपनो अहम ज्यादा प्यारो है या लाला को स्वास्थ्य ज्यादा प्यारो, बता। भैया बोली मोकु तो लाला प्यारो, तो बस फिर ले अपनी गोद में लाला को और चल मेरे साथ बाहर, डर मत, दूर जाके ठाड़िया जी। माँ यशोदा लाला को गोदी में उठाई, ऊपर से काला कपड़ा ढक दी। कहीं छोरा को बड़ी भोली है मैया, बड़ी भोली है, ढक करके चल पड़ी। आगे बढ़ती बढ़ती डर डर के बढ़ रही है और डरती जा रही है, बढ़ती जा रही है। गोपी पीछे से मैया को आगे बढ़ा रही है। वहां भोलेनाथ खड़े हैं, यहाँ ठाकुर जी खड़े। और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने ठाकुर जी को देखा और श्री बाल कृष्ण लाल ने बाबा भोलेनाथ को देखा, और जैसे नजर से नजर दोनों की मिली, मिलते ही श्री ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया, एकदम रोना बंद कर दिया। क्या बोली, लगे बाबा जी जानकार तो है, इतनी दूर ते ही मंत्र फूके और छोरा चुप कर दियो। अब मैया को थोड़ा सा और इच्छा जागी और नजदीक जाने को, और नजदीक चली गई बाबा के, और पास गई और पास गई। माँ यशोदा मैया से पूछ रही है, मैया बाबा को दर्शन कराती है। बाबा ने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद बोलते हैं कि मैया तेरे छोरा के ऊपर ते भूत सब प्रेत सब उतर गए। मैया बोली, ऐसे कैसे उतर गए, जब तक या के कान में कछु मंत्र नहीं बोलोगे तो दोबारा भूत चढ़ जाएंगे, तो कान में कछु मंत्र बोलो तो सही। बाबा भोलेनाथ ने कान में मंत्र बोला, और जैसे मंत्र बोला श्री ठाकुर जी जोर जोर से खिल खिला करके हंस दे। किसी ने पूछा ब्रजवासियों से कि भैया आप बताओ ऐसा कौन सा मंत्र बोला था कान में, तो बोले भैया मंत्र भंत्र कुछ नहीं बोला, चाचा वृंदावन दास जी का पद है और उसमें कहा कि कान में मंत्र नहीं बोला, बाबा भोलेनाथ ने कान में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोल दिया और राधा बोलते ही श्री ठाकुर जी खिलखिला के हंस दी, जोर से हंस दी। भैया बोली, हाँ बाबा जी तो बड़ा, देखो अभी तक छोरा रो रहा, हंसन लगे। मैया की इच्छा और बड़ी, अच्छा बाबा एक बात बता, भूत तो पे उतारने आवे पर तो को हाथ देखनो आवे, भविष्य बतानो आवे। मैया ना ऐसी होती है, एक काम में 10 काम करना चाहती है। कोई एक आयोजन हो, एक कार्यक्रम हो, उसमें एकादशी का उद्यापन भी कर लेंगी, उसमें गृह प्रवेश भी कर लेंगी, एक ही काम में सब हो जाए ऐसा कुछ महाराज मुहूर्त बता दो। तो यहाँ पूछ रही है बाबा से, बाबा अच्छा भविष्य देखना आता है? बाबा बोले, क्यों नहीं आता, किसका देखना है? बोले लाला को देखनो। बोले वाके ताई तो लाला को मेरी गोद में देनो पड़ेगा। मैया बोली, ऐसे कैसे, तेरी गोद में कैसे दे दूंगी? बाबा बोले, तो ठीक है मत दो, हम चलते हैं। बोले ना ना ना ना बाबा, रुक जा, तेरी गोद में दे दूंगी, पर देख बाबा जरा संभाल के, अपने नागन्य ने थोड़ा संभाल के रख, समझा के रख। बाबा ने लाला को गोदी में लिया और हाथ का दर्शन करते करते बोले, मैया अरे यशोदा मैया, तेरे तो मैया भाग्य खुल गए, कैसो लाला पायो है तेने। मैया तो को पतो नहीं तेरो कितनो नाम रोशन करेगो, मैया तो को पतो नहीं यू बड़ो है के बहुत बड़ो राजा बनेगो, मैया बड़ो है के या के सोने के महल होंगे, और तोर मैया हजारों लाखों या के दास दासी।

और बाबा बताना या को ब्याह होगो भी के नहीं होगो, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है। बाबा ने हाथ देख करके मैया को बतारी, मैया कैसी बात करती है तू, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है पूछ रही है। अरे मैया, या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि यहाँ तक नहीं समा रही। बोले मतलब मैया, तेरे छोरा की 1, 2, 10, 50, 100 नहीं 16,108 ब्याह होंगे। अब जैसे मैया ने सुनी तो बस वहीं खड़ी की खड़ी। बाबा बोले कहाँ सोच रही है मैया? बोले बाबा न्यू सोच रही हूँ, अगर दिवाली वाले दिन मेरी सबरी बहू मेरे पाम छीने खट्टी आ गई तो मेरी का हालत होगी। बाबा वहीं बैठे बैठे मेरे तो 16,108। अरे बाबा काय को पागल बना रहे हो, या कलुआ को तो एक बहू नहीं मिलेगी, तू 16,108 की बात कर रहे हो, कौन देगो या को अपनी छोरी। बाबा ने कहा मैया अब जैसा तू सोचे सोच, भविष्य है देख लेना। मैया ने सोचा कि बाबा ऐसे ही मजाक कर रहे, मजाक में बोल दिया, पर मैया उसको मजाक में ले गई, अब उसको क्या पता ये सत्यता है। अच्छो भैया अब मैं चलूं, समय है गयो है, भविष्य बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते बाबा जी अब बहुत भविष्य बता लिया आपने, अब आप जाइए कैलाश पर्वत पर, मैया जी आपको याद कर रही होंगी, अब आप प्रस्थान करिए। तो भोलेनाथ जी मैया को प्रणाम करते हैं, कहते मैया अब मैं चलता हूँ। मैया कहती ना ना बाबा, तू यहाँ ते मत जा, ब्रज छोड़ के मत जा। क्यों? क्योंकि क्या का पतो कब मेरे छोरा को फिर नजर लग जाए, तो कोई तो चाहिए नजर उतारवे को। तब मैया कहती है रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। यहीं रह जाओ बाबा। और बाबा भोलेनाथ वहीं ब्रज में अपने लाला के सानिध्य में रहे। आज भी ब्रज जाइए, चार स्थान पर चार रक्षक बन करके बाबा भोलेनाथ ब्रज में विराज

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदे सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो कुछ भी संभव है।
1: ये मत कहो खुदा से।
0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गाइड बीके शिवानी जी के विचार।
1: ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
2: क्या कभी कभी ऐसा होता है हमारा मूड बिल्कुल अच्छा होता है, परफेक्ट मूड में हम बैठे हैं, कोई और आया मूड खराब के साथ और थोड़ी देर के बाद पूरे घर के सबके फोल्डर खुल सकता है। फिर हम कहते हैं शांति थी घर में जब तक ये नहीं आए, अब ये आए तो पूरा घर क्या हो गया, अशांत हो गया। क्यों ऐसा हुआ? वो आत्मा अपनी अशांति का फोल्डर खोल के आई है, हमने ध्यान नहीं रखा तो उनके अशांति के वाइब्रेशन से हमारे पास भी जो एंगर का फोल्डर है वो खुल गया। लेकिन हमने नहीं कहा कि मैंने अपना खोला, हमने कहा इनकी वजह से है, ब्लेम भी हमने उन पर ही डाल दिया सब पर। और फिर कई बार सबके फोल्डर खुल जाते हैं, एक इरिटेट हो जाता है, एक नाराज हो जाता है, एक रोने लगता है, एक उदास हो जाता है, एक कमरा बंद करके उधर चला जाता है। हम कहते हैं एक आए सारा घर उथल पुथल हो गया। हो सकता है ऐसा? हो सकता है? हो सकता है। किस किस को लगता है ऐसा हो सकता है, एक की वजह से पूरा घर बदल सकता है? वेरी गुड, तो फिर तो हो सकता है, फिर तो हो सकता है। फिर मंडे को क्या हो सकता है, फिर मंडे को क्या हो सकता है कि एक जाए और कैसा जाए, एक जाए और कैसा जाए, पीसफुल जाए, काम जाए, एक्सेप्टिंग जाए, रिस्पेक्टफुल जाए। और क्या ऐसा हो सकता है एक जाए और पूरा घर बदल जाए? इक्वेशन तो सेम ही होगी ना, जो इक्वेशन नेगेटिव में अप्लाई करती है वही इक्वेशन थ्योरिटी में भी तो अप्लाई करेगी। That is why when one changes, change automatically starts happening. कभी भी नहीं सोचना लेकिन हमारे घर में तो अलग है, वर्क प्ले, नो, पावर ऑफ वन, एक में शक्ति है, एक सारे वातावरण को बदल सकता है। सिर्फ वो एक को ध्यान क्या रखना है, वो एक को ध्यान क्या रखना है, मेरा वो वाला फोल्डर खुला रहे। अब आपको लगता है शांति का फोल्डर परमानेंट नाइम लाइफ टाइम के लिए खुला रहेगा यहां से जाने के बाद? देखो ये याद रखना, आसपास वाले नहीं आए थे खोलने के लिए फोल्डर, तो उनका तो दूसरा वाला खुला हुआ होगा फोल्डर। सारा दिन हमारी वाइब्रेशंस का असर दूसरों पर होता है। हम पीसफुल हैं, हमारी वाइब्रेशन का असर दूसरे पर होता है। लेकिन दूसरा डिस्टर्ब्ड है तो उसका असर भी हमारे ऊपर होता है। तो कभी कभी क्या होता है, मंडे तो बड़ा पीसफुल बीतता है, अच्छा आसपास के लोग भी ना थोड़ा ऐसे करके देख रहे होते हैं, अच्छा बड़े आए, देखते कितना दिन टिकता है इनका, बड़ी चेकिंग होती है घर जाने के बाद, अभी देखते हैं, नए नए आए ना वापस, अभी देखते हैं, चले तो सही, चार दिन और बीते तो सही, दे तो टेस्टिंग बड़ी होगी वापस जाने के बाद, तो वो भी होगा। फिर धीरे धीरे हम अपने नॉर्मल रूटीन में जाएंगे, आसपास की एनर्जीज डिफरेंट होंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एंड पता ही नहीं चलता कब हमने फिर से वापस पुराने फोल्डर खोल लिए। हो जाता है और फिर हम क्या कहते हैं, वो सब वहीं ठीक था आश्रम में, तो बच्चे नहीं है उनके, उनको कोई काम नहीं करना है, उनको क्या पता है कितनी टेंशन होती है, नहीं फिर गया। फिर नेक्स्ट ईयर जब कॉन्फ्रेंस आती है ना, फिर सेंटर पे बोलते हमको भी जाना है वहां पे, हाँ बहुत पीसफुल था अभी वापस हमें 3 दिन। वी आर नॉट कमिंग हियर फॉर 3 पीसफुल डेज, हम यहां से विधि सीख कर जाते हैं। इसीलिए मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टडी, 3 दिन में कोई भी संस्कार परमानेंटली चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जो फोल्डर खोला फिर उसको मेडिटेशन से क्या करना है, रोज खोलना है, रोज खोलना है, रोज खोलना है, रोज स्टडी करते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, रोज अटेंशन रखते हैं, अटेंशन कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा स्वभाव वो 5th फोल्डर से ही चलने वाला है, रोज चाहे कितने भी साल बीत जाए। जैसे हेल्थ का रोज ध्यान रखते हैं, हेल्थ का रोज ध्यान रखते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते एक बार अच्छे से खा लिया और चलेगा शरीर हमेशा. नो, इट इज डेली. बॉडी हैज टू बी नरिश्ड डेली, सोल ऑल्सो हैज टू बी नरिश्ड डेली. हम इसको नरिश नहीं कर रहे बहुत सालों से और डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी आ चुकी हैं. तो सडनली पिछले 20-30 सालों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया एंड एवरी ईयर द शिफ्ट इज इंक्रीजिंग. क्यों डिप्रेशन बढ़ा, क्यों बीमारियां बढ़ी? क्योंकि हम भाग रहे थे अपने काम कारोबार में, इतना भाग रहे थे, कमाने में इतने बिजी थे कि हमने रुक कर इसको कभी नरिश ही नहीं किया. आज सुबह भी जब मैं आ रही थी एयरपोर्ट पे, फिर उधर जहां भी जो लोग मिले, हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छा आप आइए मेडिटेशन सीखे. हाँ हम सोच तो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अकाल आया पड़ा इस टाइम सृष्टि के ऊपर. रियली इट्स एन एपिडेमिक. एवरीवन सेज द सेम लाइन एंड वो इतना डीप बिलीफ सिस्टम बन गया है कि वो एक कलेक्टिव वाइब्रेशंस ऑफ द वर्ल्ड. वो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं वेरी बिजी, टाइम नहीं मेरे पास. कभी आप सोचो छोटा बच्चा अगर बोलेगा ना आई एम वेरी बिजी, टाइम नहीं है, तो वो बड़े होके क्या करेगा? वो अभी से फील करते हैं उनके जीवन में कमी है. सो ये जो क्यों हुआ, डिस्चार्ज्ड बैटरी सारा दिन मेहनत कर रही है, सारा दिन मेहनत कर रही है, तो ऑब्वियसली टाइम की कमी हमेशा महसूस होगी क्योंकि थकी हुई हालत में सारा काम कर रही है. तो हमें क्या करना पड़ता है, थोड़े दिन के लिए टाइम निकालना पड़ता है, थोड़े दिन के लिए टाइम निकालना पड़ता है. वो एक घंटा निकालना पड़ता है सिर्फ थोड़े दिन के लिए. जैसे ही थोड़े दिन के लिए वो एक घंटा निकाला, तो ये आत्मरूपी बैटरी क्या होने लगती है, चार्ज्ड होने लगती है. जब ये चार्ज्ड होने लगती है, इसका वो फिफ्थ फोल्डर ज्यादा देर खुला रहता है सारा दिन. जब ये ज्यादा देर खुला रहता है, तो इसका सारा दिन कैसा बीतता है, सारा दिन कैसा बीतता होगा फिफ्थ फोल्डर ज्यादा खुला हुआ तो? वेरी पीसफुल, काम, कोई कुछ कहता है ज्यादा असर ही नहीं होता, आगे की कोई चिंता नहीं होती, निश्चिंत हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, चिंता नहीं करते, ध्यान रखते हैं परिवार का, डरते नहीं है. दो बातों में बहुत फर्क है. और जब ऐसा जीवन जीना शुरू करते हैं, तो फिर टाइम टाइम टाइम टाइम पहले से कई गुना ज्यादा मिल जाता है. आप जब यहां से जाने के बाद सेंटर पर जाएंगे, आप देखेंगे वहां भाई बहने आपकी तरह परिवार संभाल रहे हैं, अपने ऑफिसेस संभाल रहे हैं. जब वो पहली बार आए थे तो वो भी कहते थे टाइम नहीं है. अब उनके पास इतना टाइम है कि वो घर भी संभालते हैं, ऑफिस भी संभालते हैं, आकर सेंटर भी संभालते हैं और सेवा भी करते हैं उनकी, जिनको वो जानते भी नहीं है. इतना टाइम आ जाता है. क्यों आ गया? यहाँ का ध्यान रखना शुरू किया, नेगेटिव वाइब्रेशन घटनी हो गई. जैसे यहाँ की हवा अच्छी है, जब साफ हवा में जाते हैं तो हमारा चलने का स्टैमिना बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता? यही आप किसी शहर में जाओ, इस टाइम दिल्ली जाओ, लोग वहां लैंड करते हैं, उनको खांसी होने लगती है. पोल्यूशन स्टैमिना डाउन लाती है, और जैसे ही पोल्यूशन हटी, सफाई में आए, स्टैमिना बढ़ जाता है. आप फिजिकली यहां काम करेंगे, थकावट कम होगी. सिमिलरली इमोशनल पोल्यूशन, जब इमोशनल पोल्यूशन इतनी होगी यहां और यहां, थकावट तो सारा दिन लगेगी. एंड देन वी फील टाइम नहीं है, चल रहा है, भाग रहे हैं, कर रहे हैं. और जैसे ये इमोशनल पोल्यूशन हटी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, काम जल्दी होगा, टाइम बहुत होगा. तो यहां से जाने से पहले अपने आप का कमिटमेंट ये है कि मैंने जो 3 दिन निकाले हैं, ये 3 दिन बैटरी को क्या करने के लिए थे, चार्ज्ड. इसके बाद हर रोज 1 घंटा होगा उस चार्ज को बढ़ाने के लिए, नहीं तो ये 3 दिन का इफेक्ट, इस इल्यूजन में बिल्कुल ही नहीं रहना कि ये 3 दिन का इफेक्ट कोई लाइफ टाइम चलता है. ये 3 दिन भी नहीं चलता, एक्चुअली नहीं चलता है. कईयों का तो स्टेशन एयरपोर्ट तक जाने तक ही कम हो जाता है, पता चल गया पहुंच के 4 घंटे ट्रेन लेट है, उधर ही परेशान हो जाएंगे. फिर कहेंगे ऊपर ही ठीक था सारा। सो इट इज नॉट इजी, ये बहुत जन्मों की डिप्लीशन है, ऐसे नहीं तीन दिन में। तीन दिन में वी आर गोइंग टू लर्न द वे ऑफ डूइंग इट, नॉट दैट इन थ्री डेज इट विल गेट चार्ज्ड, नो। लेकिन ये चार्जिंग डेफिनेट है अगर हम रोज उसको एक घंटे के लिए क्या करते रहेंगे, फिर से चार्ज्ड। हमारे यहाँ जो सोच चल रही है, जो फीलिंग चल रही है, इसका क्रिएटर कौन, इसका क्रिएटर कौन, कौन क्रिएट करता है हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स, आवर सब। जब हम कहते हैं हम इरिटेट हुए, गुस्सा हुए, नाराज हुए, हम ब्लेम किस पे डालते हैं, दूसरों पे। हम कहते हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ। ये सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम है जिसकी इक्वेशन को हमें आज चेंज करके जाना है। हमें गुस्सा कौन दिलाता है? जैसे ही हम कहते हैं उनकी वजह से नाराज, उनकी वजह से इरिटेट, पावर सारी किसको दे दी? क्या ये पॉसिबल है कि कोई गलत व्यवहार करे और हम पीसफुल रहे? क्या ये पॉसिबल है कोई गलत व्यवहार करे हम पीसफुल रहे? वो रूडली बात करे हम प्यार से बात करे, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? वो बहुत बहुत बहुत गलत करे हम अच्छे से बात करें, ये पॉसिबल है? और वो तो बहुत बहुत बहुत ही गलत कर दे और हम उसको दुआएं दें, ये पॉसिबल है? हाँ जी, नो, खड़े हो जाइए, नो। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। दे आर बिहेविंग रॉन्गली, वेरी बैड, रूडली, चीटिंग, मैनिपुलेटिंग, एवरीथिंग। कैन वी बी नाइस, काइंड, रिस्पेक्टफुल? नो। व्हाई? व्हाई? लेट्स थिंक व्हाई, Why? अच्छा, उनके साथ जो खड़े हैं वो खड़े हो जाइए एक बार, जो साथ में बैठे। भाई सर, प्लीज स्टैंड, प्लीज स्टैंड। हाँ, एवरी वन विजुअलाइज वन पर्सन इन योर लाइफ, टू पीपल, राइट? टू पीपल, ही विल बिहेव हिज वे। सपोज ही शाउट्स राइट नाउ एट यू, कैन यू रिप्लाई रिस्पेक्टफुली? ओके, Why no? Not possible. She is behaving her way. Can you respond your way? She is shouting. Can you be quiet? I can't be quiet. No. Who irritates you? She or you yourself? She irritates you. She irritates you. सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम, बैठिए। थैंक यू। दिस इज वन बिलीफ सिस्टम विच इज नॉट अलाउविंग अस टू बी आर सेल्फ। नाउ ब्रिंग एनी वन पर्सन ऑफ योर लाइफ हियर, हियर, एंड यू आर हियर। ये उनका बिहेवियर है। Who is creating my thoughts and feelings? Who is creating my thoughts and feelings? Forget behavior, just thoughts and feelings. They are behaving like this. Who is creating my thoughts and feelings? Who is creating my words and behavior? Can they irritate me or do I choose to get irritated? Very good. That much clarity we need. Who chose the irritation? Me. Who chose the anger? Me. Who chose to get hurt? Me. Who created those thoughts? Me. What did they create? They created their behavior. What did I create? Is my behavior dependent on their behavior? It is dependent on me. All that I have to take care is when they do something which is their way, I have to respond my way. एक इक्वेशन आज से चेंज कीजिएगा, चाहे गुस्सा भी आ जाए, लेकिन जब गुस्सा आए तो ये नहीं कहना इनकी वजह से, because that is not true. बार बार कहने से कहने से कहने से क्या हो गया, हमने एक संस्कार क्रिएट कर लिया विच सेड एवरीथिंग आई एम फीलिंग इज बिकॉज ऑफ अदर पीपल। सिचुएशन ही ऐसी थी तो टेंशन तो होनी थी, तो टेंशन किसने क्रिएट की? सिचुएशन ने। उसी सिचुएशन में चार लोग होते हैं, उसी सिचुएशन में चार लोग होते हैं, चारों को सेम टेंशन होती है? नहीं, ये एक सेम बिहेव करता है, चार लोग इस तरफ हैं, चार लोगों की फीलिंग्स एक जैसी होती है? नहीं, दिस इज स्टिम्युलस, दिस इज रिस्पॉन्स। स्टिम्युलस इज इन देयर कंट्रोल, रिस्पॉन्स इज इन माय चॉइस। आज एक मुक्ति यहां जो चल रहा है, हमारे वर्ड्स, हमारे बिहेवियर एवरी टाइम से दिस इज माय चॉइस, दिस इज माय क्रिएशन। डोंट पुट द फिंगर ऑन पीपल और सिचुएशंस कि परिस्थिति और लोगों की वजह से मेरा ऐसा हो। ट्रू नहीं है ये बात। दे विल बी देयर वे, आई विल बी माय वे। फिर आप चूज कर सकते हैं कौन सा वे आपको होना है, लेकिन एटलीस्ट ये ध्यान रखना होगा कि ये रिस्पॉन्स कौन चूज कर रहा है, कौन चूज कर रहा है? मैं। गुलामी का जीवन नहीं जीना, दूसरों के व्यवहार के गुलाम। वो रोज अपना व्यवहार करेंगे, हम रोज डिस्टर्ब होंगे, तो हम उनके व्यवहार के गुलाम, हम उनके व्यवहार के गुलाम। स्पिरिचुअलिटी मेक्स अस इमोशनली इंडिपेंडेंट। लोग आजकल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। बच्चे कहते हैं आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगना चाहता। वाइफ कहती है आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं अपने हस्बैंड से पैसे नहीं मांगना चाहती। पैसे किसी से मांगना नहीं चाहते, खुशी मांगने के लिए सारा दिन खड़े, प्लीज बी नाइस टू मी सो दैट आई विल बी हैप्पी, सारा दिन खड़े। इमोशनली इंडिपेंडेंट मीन्स फॉर मी टू बी हैप्पी यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। वो अपना व्यवहार करेंगे, हम अपना व्यवहार करेंगे। हम रिएक्ट क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को चार्ज नहीं किया है। तो जब वो नेगेटिव फाइल खोलते हैं तो हम भी इमिजिएटली कौन सी फाइल खोल देते हैं? नेगेटिव। और ब्लेम किस पर डाल देते हैं? ब्लेम किस पर डाल देते हैं? एक टीम में पांच लोग हैं, सुबह सुबह एक जना एंटर किया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी जुकाम सर्दी लेकर वो सुबह सुबह ऑफिस आ गया, शाम तक बाकी चार में से भी एक को हो गया। तो वो एक ने उसको क्या कहा, मैं बीमार किसकी वजह से हो गया, क्या ये बात सच है? बाकी तीन क्यों नहीं हुए? बाकी तीन क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है। मैं क्यों हुआ? क्योंकि मेरा वीक है। लेकिन मैंने ये नहीं रियलाइज किया मेरा वीक है, मैंने कहा उनकी वजह से मुझे खांसी हो गई है, तो मैंने अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। सिमिलरली वो पांच लोग थे, एक एंटर हुआ, मूड खराब है, सुबह सुबह इरिटेट हो रहा है, सुबह सुबह चिल्ला रहा है लोगों के ऊपर, मूड ही खराब है, घर से झगड़ा करके आया, उसके मूड की वजह से मैंने भी रिएक्ट कर दिया और मैंने कहा इसकी वजह से मेरा भी मूड खराब हो गया। ये नहीं कहा मेरी शक्ति घटी हुई थी तो मैंने भी रिएक्ट कर दिया। ब्लेमिंग पीपल एंड सिचुएशंस फॉर हाउ वी थिंक एंड फील इज द बिगेस्ट इल्यूशन। तो एक इक्वेशन जो भी यहां चले उसका जिम्मेवार कौन? हम। जब हम पावर अपने पास रखेंगे हम चेंज हो सकते हैं। जब हम कहेंगे उनकी वजह से तो हम किसको चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं? उनको। हम इरिटेट होते हैं किसकी वजह से? हम इरिटेट होते हैं किसकी वजह से? कोई काम कर रहा है, हमने उसको काम करने के लिए बोला, वो टाइम थोड़ा धीरे लगा रहा है, ज्यादा टाइम लग गया, वो ठीक से नहीं कर रहा है, इरिटेट कौन हो रहा है? हम हो रहे। फिर भी उसने ठीक से नहीं किया तो गुस्सा कौन हो रहा है? हम। एंड जब हम ये कर रहे हैं तो एनर्जी किसकी घट रही है? हम काम हो जाएगा, काम हो गए, आज बहुत काम हो गए, बहुत प्रॉस्पेरिटी मिली, बहुत कुछ कमाया, घर में सब कुछ आ गया, लेकिन जिस तरह कमाया, इरिटेट होके, क्रिटिसाइज करके, मजाक उड़ा के, किसी की निंदा करके जिस तरह कमाया, उसकी वजह से घर में खुशी, सेहत और रिश्ते घट गए, बाकी चीजें बढ़ गई। और फिर इतनी इल्यूजन में रहे कि हमने सोचा जितनी चीजें बढ़ जाएंगी उतने हम हैप्पी होंगे। दैट वॉज अनदर वेरी बिग इल्यूजन।

एक ग्लास है भरा हुआ है, इस पूरे हॉल में चलना है, सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, ऐसे ऐसे करके स्टेज पे वापस आना है, शाम को ग्लास भरा हुआ होना चाहिए, सुबह निकलना है, सारा काम करना है, शाम को वापस आना है, ग्लास भरा हुआ होना चाहिए, हो सकता है? आप में से कौन कौन कर सकता है? ये सीढ़ी से उतरना है, पूरे हॉल का राउंड लेना है और ये सीढ़ी से वापस आना है विद ग्लास फो, कौन कौन कर सकता है? सब नहीं, हाथ ही नहीं उठा रहे सब, देखो आप पीछे हाथ ही नहीं उठाते, कर सकते हैं ना? करने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ करना क्या होगा? प्रायोरिटी, नींबू चम्मच खेला था स्कूल में, गुड, भागना था, भागना था, कई बार तो दो लोगों के पाव भी बांधे गए थे साथ में, लेकिन ध्यान किस पे रखना था? नींबू गिरना नहीं चाहिए। इवन अगर आप फर्स्ट आ गए लेकिन नींबू गिर गया, हम हार गए, क्योंकि हम भागने पे ही फोकस कर रहे थे, नींबू तो स्टार्टिंग में ही गिर गया था और हम एंड में पहुंच गए, हमने कहा ये आई केम फर्स्ट, उधर उसने कहा डिस्क्वालिफाइड। बोले क्यों डिस्क्वालिफाइड? बोले नींबू तो पहले गिर गया था। वो नींबू कहाँ है? वो नींबू कहाँ है? नींबू कहाँ है? नींबू यहाँ है। भागना है, बहुत भागो, जितना अभी तक भाग रहे थे उससे भी फास्ट भागो, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है भागते हुए नींबू नहीं गिरना चाहिए, नींबू नहीं गिरना चाहिए। एंड डेफिनेटली दूसरे को नहीं ब्लेम करना, मेरा नींबू गिरा दिया, यहाँ वर्क, यहाँ दैट इज प्रायोरिटी इन लाइफ। ये प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए, वी हैव टू नो व्हाट इज इट देयर वी आर रनिंग। हम भाग रहे हैं लेकिन भागते हुए खुशी गिर गई, कभी कभी तो सुबह सुबह ही खुशी गिर जाती है, अभी तो घर से बाहर भी नहीं निकले, फिर रास्ते में ट्रैफिक हो तो दूसरी जगह खुशी वहां गिर जाती है। रोज उसी रास्ते जाते हैं, रोज उसी ट्रैफिक में खड़े होते हैं, लेकिन रोज इरिटेट होते हैं, रोज आसपास के लोगों को कुछ कुछ बोल भी देते हैं बंद गाड़ियों के अंदर, ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले को तो सुना ही भी नहीं दे रहा हम क्या बोल रहे हैं। एनर्जी किसकी डिप्लीट हो रही है? मेरी। नींबू गिर गया। राजयोग मेडिटेशन मीन्स टेकिंग केयर ऑफ द सेल्फ, मेडिटेशन मीन्स ध्यान, ध्यान, द वर्ड इज सो ब्यूटिफुल, ध्यान, अपने मन का ध्यान रखना। आपके आसपास सारे लोग भी अपना नींबू गिरा दे, आपका गिरना नहीं चाहिए। और शाम को जब हम घर आए, बैक टू फैमिली, ये ग्लास कैसा होना चाहिए था? आज दोनों पेरेंट्स घर आ रहे हैं खाली ग्लास के साथ, धन भरपूर, आत्मा रूपी ग्लास खाली, तो बच्चों को क्या देंगे? समान ही दे सकते हैं ना फिर सिर्फ, क्योंकि समान भरपूर, शक्ति खाली, दोनों आ रहे हैं, तो बच्चों को क्या मिलेगा? आज स्कूल के बच्चे प्रोजेक्ट में डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे सुसाइड की बात करते हैं, ये कोई सक्सेस की निशानी है हमारे समाज की? ये सफलता है? इज दिस सक्सेस? नो। व्हाई? बिकॉज लास्ट फ्यू इयर्स व्हाट वी डिड, वी जस्ट केप्ट रनिंग विदाउट टेकिंग केयर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर स्टिल गोइंग टू रन बट विद टेकिंग केयर। यहां ध्यान रखते हुए भागना है, और फिर वो जो भागना भी होगा ना उसको एंजॉय करेंगे, ये ध्यान रखते हुए कि ये समान है, ये सुकून है, यहां समान मिलता है, यहां सुकून मिलता है। शाम को हमें सिर्फ समान कमा के घर नहीं आना है, क्या कमा के घर लाना है? सुकून कमा के घर लाना है। बच्चों को चीजें नहीं देनी, सिर्फ परिवार को सुकून देना है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे ऑफिस से हर एक जो घर जाए शाम को, वो सुबह जितना खुश आया था उससे ज्यादा खुश शाम को जाना चाहिए। People should go home happier than what they came in the morning. Then we are sending happy parents home. We are sending happy parents home. And if we send happy parents home, next day morning वो और happy आएंगे, फिर उसके अगले दिन वो और happy आएंगे, और day by day हमारी खुशी

क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आज क्या हो रहा है, डे बाय डे हमारा तनाव बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए जब हम चेंज होंगे, हमारा घर का वातावरण चेंज होगा, हमारा वर्क कल्चर भी चेंज हो जाएगा, हमारा लोगों के साथ व्यवहार, बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। सिर्फ अगर हम एक रोज एक घंटा दें, बहुत लोगों के जीवन बदल जाते हैं। एक की नहीं बदलती, इट्स एन इन्वेस्टमेंट विच हैज मल्टीफोल्ड रिजल्ट। बहुतों की जीवन बदलेगी अगर एक ने अपनी बैटरी को क्या करना शुरू किया, चार्ज करना शुरू किया। तो एक की बैटरी से औरों की बैटरी भी क्या होती जाती है फिर, और डिस्चार्ज बैटरी से क्या हो जाती है, औरों की बैटरी।

0: काफी स्ट्रेस।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
1: कुछ हटके।
3: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

Anjali. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? इस शानदार से ट्रैक के साथ आ गई हूँ मैं लेकर यहाँ पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। आरजे अंजलि हूँ आपके साथ हर सुबह की तरह। भाई देखो, ये वाली सुबह भी होने वाली है एकदम मस्त, यानी कि यहाँ आपको अपडेट मिलने वाली है आपकी सिटी से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगी। वेदर से लेकर आज का स्पेशल डे क्या है ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई और क्या कुछ वायरल हुआ है इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीजें है आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी कि हो जाइए रेडी, फटाफट से मसाला वाली चाय अपने हाथ में रख लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और इस शानदार से ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर

0: लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
0: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर आज ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

वेलकम बैक टू रेडियो भरानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो अब टाइम हो गया है वेदर अपडेट का। अगर आज हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 33 डिग्री जाने वाला है। इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 25 डिग्री है और विंड स्पीड मिलने वाली है 19। इसी के साथ ह्यूमिडिटी रहने वाली है 61%। लेकिन आज लाइट रेन की प्रेडिक्शन है। मौसम बहुत ही बेहतर है, शानदार सा मौसम है और इस अच्छे सुहाने मौसम के साथ एंजॉय कीजिएगा आज का दिन। और साथ ही अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो भरानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ तो अर्ज किया है।
4: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
3: कर रहे हैं आप, सुनो तो।
4: इरशाद,
3: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
4: तुम्हारे नंबर पे?
3: हाँ जी।
4: अच्छा,
3: और उन्होंने पूछा क्या?
4: क्या पूछा?
3: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
4: क्या बात कर रहे हो?
3: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
4: अच्छा,
3: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
4: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
3: नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।
4: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
3: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
4: बाय।
3: सुनो तो, कहाँ चली?
4: बाय।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। जब गाड़ी में बजे आरजे अंजलि की आवाज, समझो मॉर्निंग हो गई एकदम फर्स्ट क्लास।
3: बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है।
4: यू गॉट व्हाट आई वांटेड सोनी, मिठी गल्ला करके तू ना जा छटके छटके।

जब गाड़ी में बजे आरजे अंजलि की आवाज़, समझो मॉर्निंग हो गई एकदम फर्स्ट क्लास।

ये पूजा पाठ रोजे उपास आता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

क्या आप ही उन लोगों की तरह हैं जो बहुत ज्यादा सोचते हैं और बस सोचते ही जाते हैं? अगर ऐसा है ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हो सकता है आपका ब्रेन एक्स्ट्रा एक्टिव हो। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्शी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो आज मैं यहाँ पर एक रिसर्च लेकर आई हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें बोला जाता है कि भाई क्यों इतना सोचना है। बेसिकली उनके ऊपर ओवर थिंकर का टैग लगा दिया जाता है। सो लोग जो हर सिचुएशन का प्लान ए बी और सी सोच कर चलते हैं ना, उनका दिमाग कभी कभी रेस्ट मोड में जाना भूल जाता है। और एक स्टडी में ये रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग जो ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वो रिस्क को जल्दी आइडेंटिफाई करने और फ्यूचर प्लानिंग में भी अच्छे हो सकते हैं, बिकॉज उनका जो माइंड है ना वो 24 घंटे एक्टिव रहता है। सो वो यूज्ड टू हो जाते हैं कि अगर कोई खतरा आएगा ना तो किस तरह से एक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इसका मतलब है। एनालिटिकल थिंकिंग ज्यादा हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। प्रॉब्लम्स को पहले ही प्रिडिक्ट करने की हैबिट है आपकी, प्लानिंग और डिटेल्स पर फोकस बहुत रहता है। लेकिन इन सब क्वालिटीज के साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है जो कि आज रियलिटी चेक लेकर आई है। सो भाई साइंटिस्ट ने यहाँ बिल्कुल प्रूव नहीं किया है कि एंजाइटी किसी को ऑटोमेटिकली स्मार्टर बना देती है। इंटेलिजेंस और एंजाइटी दो अलग चीजें हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी जो ब्रेन पॉसिबिलिटीज को अच्छी तरह इमेजिन करता है, वही ब्रेन अननेसेसरी वरीज भी क्रिएट कर सकता है। सो बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही कहना चाहूंगी, ओवर थिंकिंग और इंटेलिजेंस ट्विंस नहीं है, लेकिन कभी कभी एक ही घर में जरूर होते हैं। सो इस चीज का जरूर ख्याल रखिएगा माय डियर स्मार्ट लिसनर्स। और स्मार्ट होना अच्छी बात है, लेकिन अगर वरीज आपकी स्लीप मूड या फिर डेली लाइफ को इफेक्ट कर रही है ना, तो उन्हें मैनेज करना मत भूलेगा। एक इंपॉर्टेंट टिप थी आज आपके लिए, क्योंकि बेस्ट ब्रेन वही है जो सिर्फ सोचता ही नहीं सुकून भी लेता है। सो सुकून को जरूर ढूंढिए अगर आपकी जिंदगी से कहीं मिसिंग है। और अगर फिर भी नहीं मिलता है तो रेडियो महारानी पर ये शानदार से ट्रैक सुनिए जो खास आपके लिए है। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: जहाँ जिंदगी है वहाँ हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुँचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
2: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ अर्जुन छे आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। और भाई बहुत सारी बातें मैं आपके साथ करती हूँ, लेकिन आज जो मैंने चीज नोटिस किया ना, आज हम बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में। अभी आपने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे होंगे पहले की जनरेशन में और ये अब की जनरेशन में, जिन्हें कहा जाता है 90s vs 20s की जो जनरेशन है, भाई बहुत ही ज्यादा अलग है। हमारी अगर मैं बात करूँ तो हमारे टाइम पर, यानी कि अभी मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भाई मेरे बचपन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास टॉयज ज्यादा होते थे, मोबाइल होता ही नहीं था। लेकिन आजकल ना बच्चों के हाथ में मोबाइल ही देखने को मिलता है, खिलौने दूर दूर तक देखने को मिलते ही नहीं है। एंड इसके ऊपर एक रिसर्च की गई और रिसर्च में यह आया है कि ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल हो रहा है। भाई जितने भी बच्चे हैं उनका फोकस धीरे धीरे खत्म होता जाए। और फिर अगर इससे रिलेटेड स्टडी की मैं बात करूँ तो बार बार स्क्रोलिंग करना, नॉन स्टॉप नोटिफिकेशन देखना, साथ ही रील्स और शॉर्ट्स का एडिक्शन आजकल हर एक बच्चे को है। और ये सब मिलकर ना एक बीमारी बनाते हैं, यानी कि बच्चों में इंटेंशन और ADHD जैसे सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो बस यही बोलना चाहूंगी कि जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, प्लीज मेक श्योर करें कि आपके बच्चे फोन तभी इस्तेमाल करें जब बहुत ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज आप ही उनकी हेल्प करें, उनका होमवर्क, उनके असाइनमेंट कंप्लीट कराने। बिकॉज आजकल के बच्चों ना यही एक्सक्यूज देते हैं कि असाइनमेंट है और फोन तो चलाना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता जो ये फोन चलाने के आते थे उन्हें कितना डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो भाई एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर वार्न कर रहे हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि ये बच्चों के दिमाग के फोकस सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि कहाँ फोकस करना है और कहाँ टाइम पास करना है। तो भाई जितने भी पेरेंट्स और जितने भी टीचर्स आज हमें सुन रहे हैं, बस यही कहना चाहूंगी कि आपके लिए वेकअप कॉल है। अभी उठ जाइए, फटाफट से इस मुद्दे पर ध्यान दीजिए, स्क्रीन टाइम लिमिट कर दीजिए अपने बच्चों के लिए, आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंक्लूड कर दीजिए सो दैट कि बच्चे बाहर जाकर खेलें, कल एक्टिव रखें। तो बस यही कहना चाहूंगी कि ध्यान दीजिए इन सारी चीजों को। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तो एंजॉय कीजिए। पास ट्रैक जो है खास आपके

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर की पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मैं एक बहुत ही अच्छी चीज लेकर आ गई हूँ। और यार, जब बात करते हैं ना डेली रूटीन की, तो कितना सारा काम करते हैं, लेकिन उस रूटीन में कभी आपने सोचा है कि एक ब्रेक लेना कितना ज्यादा जरूरी है? आई नो काम इम्पोर्टेंट है, पर रिचार्ज होना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आज मैं एक स्टडी लेकर आई हूँ, एंड स्टडीज के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस नॉन स्टॉप वर्क स्ट्रेस एंजाइटी और बर्नड आउट को इंक्रीज कर सकता है। सो भाई, यहाँ पर ना एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेगुलर शॉर्ट वेकेशंस या ब्रेक लेना मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। सो माय डियर लिसनर्स, आज ही अपना एक ट्रिप छोटा सा प्लान कर लीजिए। अब बात करें इस नॉन स्टॉप वर्क के इफेक्ट की, तो भाई सबसे पहले स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ाता है, कॉन्स्टेंट फटीग को इंक्रीज करता है, पुअर स्लीप और साथ ही इमोशनल एग्जॉशन, ये सारी चीजें होती है जब आप नॉन स्टॉप काम करते हो, स्पेशली हाई प्रेशर जॉब्स में ये प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा कॉमन हो जाती है भाई। सो वेकेशंस के फायदे तो हैं, हमारा माइंड फ्रेश करता है, क्रिएटिविटी और फोकस को इम्प्रूव करता है, एंड साथ ही प्रोडक्टिविटी बेटर होती है और मूड भी हैप्पियर फील करता है। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मशीन भी रेस्ट करती है, लेकिन हम तो इंसान है तो हमें तो डेफिनेटली रेस्ट लेना चाहिए। और वेकेशंस का मतलब हमेशा एक्सपेंसिव ट्रिप नहीं होती, कभी कभी बस थोड़ा सा ब्रेक ही इनफ होता है। सो वर्क हार्ड करिए, पर रिचार्ज होना मत भूलिए। और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो।
1: कैसी?
0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
2: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

इंसान के पास भी एक हिडन थड़ाई हो सकती है? कभी सोचा है इस बारे में? वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो आज हम बात करें एक हिडन थर्ड आई की। नहीं नहीं, ये वो सुपर पावर वाली थर्ड आई नहीं, लेकिन फिर भी साइंस के हिसाब से हमारे ब्रेन में एक फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर होता है। यानी कि साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर एक टाइनी ऑर्गन होता है जिसे पीनियल ग्लैंड कहा जाता है, और कभी कभी ना इसे बॉडीज थर्ड आई भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट और डार्कनेस के एक सिग्नल से जुड़ा बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर बात करें इस ग्लैंड की, तो ये ग्लैंड करता क्या है? सबसे पहले तो मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, यानी कि स्लीप अवेक साइकिल रेगुलेट करती है ये ग्लैंड, बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को सपोर्ट करता है, एंड इस वजह से ये हमारे स्लीपिंग हैबिट्स और डेली रिदम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आपको पता है यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है? रिसर्चर्स का मानना है कि स्ट्रक्चर की एवोल्यूशनरी रूट्स कैरोजन साल पुरानी हो सकती है, यानी कि कुछ रेप्टाइल से मिलती जुलती। और इतना ही नहीं, साथ ही एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन भी पाया जाता है जिसे साइंटिस्ट एवोल्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा कितनी अमेजिंग है एक ह्यूमन बॉडी, जिसे सिर्फ बाहर से देखने में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदर बहुत सारी हिडन चीजें अपने अंदर रखी हुई है। सो नेचर की सबसे अमेजिंग टेक्नोलॉजी शायद हमारे अंदर ही छुपी हुई है, ये हमें रिसर्चर्स बताते हैं, और शायद इसलिए अच्छी स्लीप को हेल्थ की सुपर पावर कहा जाता है। सो माय डियर स्लीपी आउल्स, अगर आप मुझे सुन रहे हैं ना, तो अपनी नींद जरूर पूरी कीजिएगा, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हमें किसी चीज को देनी चाहिए ना, तो वो हमारी नींद है, बाकी सारे काम बाद में। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए आज का दिन, सुनते रहिए रेडियो महारानी 9.6 FM। मिलते हैं।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। सभी को बताएं कि गर्मियों का सीजन है और गर्मियों का सीजन अपने पीक पर रहते ही ना एक चीज बहुत तेजी से बढ़ती है, वो है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। सो ऐसे में एसी और कोल्ड ड्रिंक्स ही काफी नहीं है, बल्कि अपनी बॉडी को अंदर से कूल और हेल्दी रखना भी उतना ही जरूरी है। और बस इसलिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस पे हेल्थ हाजिर है मैं योगा वेलनेस वीक, जहाँ हर दिन आपको टिप मिलेगी इन गर्मियों में खुद को किस तरह से प्रिवेंट करना है। सो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योगा एक्सपर्ट सौम्या जी, जो हमें ये बताएंगी कि समर सीजन में योगा की हेल्प से हम खुद को हीट एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन और सीजनल हेल्थ प्रॉब्लम से कैसे बचा सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सा योगासन, ब्रीदिंग टेक्निक्स और डेली हैबिट्स आपको इस गर्मी में फिट और एनर्जेटिक रख सकती है, तो बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ, जहां पर बातों का सिलसिला आज थमने नहीं वाला, बल्कि आज हमें ज्वाइन कर रही हैं सौम्या जी। सो बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक कहीं मत जाइएगा, बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है,
2: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: बाबा बाबा,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक,
1: चुप रहो आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
3: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, तो सुन के जाओ। हेलो, सुनो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: ब्रॉडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आर्जेंसी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ हम इस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं योगा वेलनेस वीक। सो हेल्थ हाजिर है। आज हम बात कर रहे हैं इस गर्मी के सीजन में खुद को किस तरह से बचाया जा सकता है इस बढ़ते टेम्परेचर से, हीट एग्जॉशन से, साथ ही डिहाइड्रेशन से। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। आज रेडियो महारानी के स्टूडियो में जुड़ चुकी है सौम्या जी, जो कि एक योगा टीचर है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और टिप ऑफ द डे जानते हैं।
1: ऑलराइट अंजलि, तो अब आप मुझसे पूछ रही थी कि रात को अच्छी नींद आने के लिए, जिससे मैं सो जाऊं और सपनों में खो जाऊं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और सुबह मैं एक नई ताजगी के साथ पहला नशा पहला मजा सो ऐसे उठूं कि ऐसे न लगे ओ गॉड अब मुझे फिर ऑफिस जाना है, तो उसके लिए मैं बहुत प्यारी सी टिप्स तुम्हें देने वाली हूँ। सुबह उठो, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है, थोड़ा सा प्राणायाम करो, 10 मिनट अपने लिए निकालो शरीर के लिए, सारा दिन प्यार से सबसे बात करो, प्यार बांटते चलो, सबसे प्यार से बात करो, अच्छे से बिहेव करो, अच्छा खाना खाओ, सात्विक भोजन खाओ, और जब रात का समय आए सोने का, तो सबसे पहले इस प्यारे से फोन को, जो तुम्हारी जान है, इसे थोड़ी देर के लिए कहो चलो मैं तुमसे कल मिलूंगा, और उसे छोड़ दो। और फिर बेड पे आओ, अपने पैरों को दो, उस ऑयल से थोड़ी सी मसाज करो, थोड़ा सा ऑयल नेवल में डालो, थोड़ी सी अपने हेड की प्यार से, अपने हेड को प्यार से सहलाओ कि अभी सब ठीक है, सब ठीक है, अब तुम सो जाओ। और फिर भ्रामरी प्राणायाम करो, कुछ मिनट्स के लिए तो निकालो, धीरे धीरे ये समय तुम्हें मिलता जाएगा। और उसके बाद प्यार से योग निद्रा के लिए लेट जाओ और गुड नाइट कर दो, सारी चीजों को, सारी प्रॉब्लम्स को अलविदा कह दो और सो जाओ। और फिर सुबह कैसे उठोगी वो मुझे तुम जरूर बताना। सो थैंक यू लिसनर्स, आप सबको मुझे ये बताकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी चीजें लाती रहूंगी। अब मैं चलती हूँ। अच्छा तो हम चलते हैं, पूछोगे नहीं फिर कब मिलोगे, कहाँ? रेडियो महारानी 89.6 FM पर। बाय बाय, लव यू ऑल।
0: थैंक यू सो मच सौम्या जी, हमारे लिसनर्स तक इतनी खूबसूरत बातें पहुंचाने के लिए और ये बताने के लिए कि बीट द हीट, यानी समर सीजन, खुद को गर्मियों से किस तरह से बचाना है। और बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन आज नहीं, आपसे फिर मिलेंगे कल एक नई टिप ऑफ द डे के साथ। और बस यही कहना चाहती हूँ लिसनर्स, योगा से ही होगा। सो अपनी फिटनेस का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, साथ ही बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अंशली आपके साथ और शो लेकर आई थी मॉर्निंग एक्सप्रेस। भाई फिलहाल हम लोग आ गए हैं वीकेंड में, जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। और जब वीकेंड आता है ना तो अपने साथ एक अलग ही वाइब लेकर आता है, क्योंकि वीकेंड ना हमें मौका देता है रेस्ट करने का, रीस्टार्ट करने का और अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने का। बिकॉज ऑफिस के चलते, स्कूल के चलते या फिर घर के काम के चलते ना, खुद को हम टाइम ही नहीं दे पाते। ऐसे में बस वीकेंड ही तो है जो अपना सा लगता है, तो बस इस वाले वीकेंड को भी ना अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, चिल कीजिए और हाँ हो सके तो एक शॉर्ट ट्रिप जरूर करके आइएगा, सो दैट कि आपका माइंड भी फ्रेश हो सके। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम। फिलहाल मेरा वक्त हो गया यहाँ से जाने का, मिलेंगे मंडे सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो?
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।
2: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
3: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिलौती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मौसम के बारे में, जहाँ 10:07 हो रहे हैं और इस वक्त 27 डिग्री सेल्सियस तापमान शहर का बना हुआ है। कल से सीधा 10 न्यूमेरिक नीचे। जी हाँ, कल इसी वक्त 37 पहुंचा हुआ था तापमान, आज 27 है। क्योंकि कल अगर बात की जाए थोड़ी सी हल्की बहुत ही सही रात को बारिश हुई और सुबह होते ही फिर से थोड़ी बहुत बूंदाबांदी बारिश हुई और मौसम बना हुआ है मौसम विभाग का कहना है आज कल अच्छी खासी बारिश होने वाली है। बारिश होती है तो बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। हवाओं ने, आंधी ने, बारिश ने मौसम साफ कर दिया है, धूप से राहत मिली। वहीं एक जो भी थोड़ा थोड़ा भले धीरे धीरे ही सही कंट्रोल होता नजर आ रहा है। तो इस वीकेंड बारिश का लुत्फ उठाइए, बाकी ऐसी और भी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ बात दोस्तों बात करते हैं, देखिए जहाँ पे HSVP बारिश के मौसम में लगभग 39,000 पौधे शहर में लगाने वाला है। ये पौधे वैसे दिल्ली एक्सप्रेसवे की ग्रीन बेल्ट के साथ सेक्टर्स में लगाए जाने वाले हैं, जहाँ एक्सप्रेसवे सेक्टर 59, सेक्टर 9, 17, सेक्टर 37 के पास करीब 80,000 पौधे लगाए थे। साथ ही 64 और 65 की ग्रीन बेल्ट में भी लास्ट ईयर पौधे लगाए गए। अब बारिश के मौसम को देखते हुए फिर से इस बार पौधे लगाए जाने वाले। मैं भी आपसे यही कहूँगा कि देखिए बारिश का सीज़न है, बारिश में आपको जहाँ जहाँ मौके मिले पौधारोपण जरूर करें कि ये पौधे हम कितने लगाएं, कितनों की केयर कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की होड़ में मत रहिएगा। देखिए जहाँ ख्याल रखा जा सकता है वो बात अलग है, अगर हम लोग अपने पर्सनल व्यूज़ पे लगाएं तो एक ही दो दो पौधे लगा उसका प्रॉपर ख्याल रखें, वो पौधे पेड़ बन जाएं, तो बस इतनी ही हेल्प हमारे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, शहर को साफ करने के लिए बहुत होगी। तो ये कदम ज़रूर उठाएं, बाकी ऐसी भी चर्चाएं करता रहूँगा। उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात करते हैं साइबर फ्रॉड्स के बारे में। चाहे दिन हम सब जानते हैं कि साइबर फ्रॉड्स होते नजर आते हैं, कभी कोयल के नाम पे, कभी अनवांटेड लिंक्स, अनवांटेड वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट्स, तो कभी बिल्स के नाम पर, तो कभी समर कैंपेन, समर हॉलीडेज के नाम पर, तो कभी वैकेशंस। इन सब में आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए जब भी आपको ज़्यादा डिस्काउंटेड वेबसाइट्स ऐसे कुछ दिखें तो प्लीज़ ऐसे क्लिक ना करें। वेरीफाइड पोर्टल से जाकर ही शॉपिंग करें, वेरीफाइड वेबसाइट्स, वेरीफाइड प्लेटफॉर्म से जाकर ही समर वैकेशन या कुछ भी बुकिंग आप लोग करें। और कोई भी अननोन नंबर से या अननोन ग्रुप से आपको कुछ मैसेज आता है या लिंक्स आते हैं कुछ मनी इन्वेस्ट करने के नाम पर, उन पर क्लिक ना कीजिए, आपका अकाउंट खाली हो सकता है। ऐसी चीज़ों पे हमें फैमिलीज, फ्रेंड्स, नेबर्स, इन सब के जब भी बैठें तो प्लीज़ एक बार चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। जिन तक ये बात नहीं है उन तक बात पहुँचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होगी तो लोग फ्रॉडर्स के चक्कर में नहीं फंसेंगे। और कुछ भी अगर ऐसा हो भी जाता किसी के साथ तो सबसे पहले 1930 पर कॉल करें, जो कि साइबर फ्रॉड की हम कंप्लेंट कर सकते हैं, जिससे कि अगर हमारे अकाउंट से कोई भी पैसा डिडक्ट हुआ है उसको फ्रीज किया जा सकता है।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM कुछ हटके।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।
3: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
4: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
5: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लिप। दोस्तों आज फिल्मी गलियारे में बहुत सी चर्चाएं करने वाला हूँ। वीकेंड तो वीकेंड में बहुत सारी कहानियां सिनेमा घरों में रिलीज होने को है तैयार। कुछ का होगा आगाज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तो कुछ होंगी सिल्वर स्क्रीन पर। आउच, नई कहानी के साथ कुछ नए ट्रेलर टीजर भी मचा रहे हैं धमाल सोशल मीडिया पर और कुछ नए गाने कुछ नई जोड़ियां करने वाली है धमाल आने वाले कुछ वीकेंड्स में। जाऊंगा हिंदी सिनेमा की बढ़िया बढ़िया कहानी का आगाज तो कहीं होगा साउथ इंडस्ट्री के एक्शन थ्रिल का भरपूर डबल डोज तो कहीं होने वाला है पंजाबी गानों का धमाल। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक के सिनेमा के गलियारों में चर्चाएं होने वाली है घुमाने वाला हूं ये सारे गलियारे। लेकिन इन सभी गलियारों में घुमाने से पहले सुना देता हूं कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: बन्नो की सहेली से लेकर दीदी का दीवाना देवर पूरे सिनेमा की अपडेट मिलेगी ओनली इन फिल्मी फ्लेवर।
1: बंदा है ये खुद से बेगाना, अजी बंदा है ये खुद से बेगाना।

से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात करते हैं ना ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियंस का आगमन नहीं अगर बात की जाए तो फर्स्ट इंडिया में लगभग 25 लाख नेट ही कमाए और कहाँ कहा जा रहा था कि ये कहानी अच्छा खासा कमाई करते नजर आएगी। देखिए 25 से 30 लाख कुछ ऐसा कमाना कोई ज्यादा बड़ी वो नहीं है और बात करें ओपनिंग रिस्पॉन्स ही इस कहानी को अच्छा नहीं मिला। वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो 2.1 करोड़ और नेट 1.78 करोड़ तक कमाती नजर आई है जैकी श्रॉफ की द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात करते हैं एक और बढ़िया कहानी के बारे में, जैकी श्रॉफ। जहाँ उनकी लास्ट कहानी की तो हमने बात करी ही कि जैकी श्रॉफ की सुपर हीरो कहानी तो अच्छा कमाल नहीं मचाई, नहीं चर्चाएं चल रही हैं कि जैकी श्रॉफ खलनायक रिटर्न्स में अपने रोल कंफर्म कर दिया और वो इंस्पेक्टर राम कमिश्नर के कैरेक्टर में वापस आने के लिए एक्साइटेड। उन्होंने संजय दत्त और सुभाष गई दोनों से प्रोजेक्ट पर बात होने की भी चर्चा करते नजर आ। जैकी ने सीधा बोला कि 100% वो फिल्म का हिस्सा है और कमिश्नर तो होना ही चाहिए, जैसा लाइन बोलकर अपनी रिटर्न रीन कंफर्म कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे संजय दत्त को मेरा जान है संजू बाबा कह करके उन्होंने कहा कि ये कहानी फिर से आ रही है। 1993 की खलनायक में जैकी ने इंस्पेक्टर राम का रोल किया था जो बल्लू बलराम को पकड़ने वाले मोरल काउंटरवेट थे। फैंस भी एक्साइटेड है इस कहानी की रीयूनियन देखने के लिए, क्या धमाल होता है इस कहानी में। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: तुम्हारी हरकतें जानता होगा।
1: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है. होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं.
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से. हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है.
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक. हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात करते हैं सिनेमा के गलियारों से एक और बढ़िया कहानी के बारे में, जहां अगर चर्चा की जाए तो क्या कुछ नया आने वाला है वो आपको बता रहा हूँ। रवि मोहन ऑफिशियली लोकेश यूनिवर्स यानी कि LCU में ज्वाइन कर चुके हैं। लोकेश कनगराज फिल्म बेंज में नजर आएंगे और कहा जा रहा है LCU का फोर्थ बिग लिंक सबके सामने आएगा। बेंज को कनकन डायरेक्ट कर रहे हैं जबकि लोकेश कनगराज स्टोरी राइटर और को प्रोड्यूसर के रूप में सबके सामने आएंगे। फिल्म में राघव लॉरेंस, मोबिन पॉली और सम्योथा भी हैं और रवि मोहन का रोल मेजर हाईलाइट माना जा रहा है। अब देखते हैं ये कहानी कब सबके सामने लेकर गई। अनाउंसमेंट तब आई जब रवि मोहन ने पहले एक्टिंग से टेम्पररी ब्रेक की बात की थी, इसी वजह से उनका LCU में एंट्री लेना फैंस के लिए सरप्राइज और बस दोनों बन गया। देखते हैं अभी रवि मोहन का किरदार यहाँ पे क्या कुछ धांसू कमाल लेकर के आता है। बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे पहले का और खूबसूरत सा ट्रैक

गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं बूम के बारे में, जहाँ न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 26 में 3 अवार्ड जीतते नजर आई और फिल्म को वहां का बिगेस्ट विनर माना गया। ये लक्ष्मी प्रिया देवी की डायरेक्टेड मणिपुरी लैंग्वेज की फिल्म है, जिसे पहले भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल चुकी है। फिल्म ने बेस्ट डेब्यू फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट चाइल्ड एक्टर के ऑनर्स लिए। यंग एक्टर गगन को बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड मिला और लक्ष्मी प्रिया देवी को बेस्ट डायरेक्टर का टाइटल। कहा जा रहा है बूम ने इससे पहले बाफ्टा विनिंग रिकॉग्निशन भी हासिल किया और स्पेशली बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में, जहां पे विन के बाद फिल्म की ग्लोबल स्टैंडिंग और स्ट्रांग होती गई। यहाँ एक और खिताब जीते सार फिल्म अच्छा खासा प्यार बटोरते नजर आई। अदर विनर्स की अगर बात की, विमुक्त, विक्टोरिया, दीजू वो भी इंक्लूड रहे। मणिपुरी फिल्म बूम ने न्यूयॉर्क इन फेस्टिवल में अच्छा खासा धमाल मचाया और इंडिया का नाम रोशन किया। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात करते हैं आदर्श गौरव के पिक्चर्स जिंगले के साथ एलियन यानी कि अर्थ सीजन 2 पर काम करने के लिए क्रिएटिविटी बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एंसेंबल के साथ काम करना हर दिन उन्हें एक बेहतर ट्रेनिंग और बेहतर पुश करता है। काफी एक्साइटेड है आदर्श के मुताबिक पीटर और पूरी कास्ट के साथ काम करना उनके परफॉर्मेंस और शार्पन करता। उन्होंने ये भी कहा कि उनका कैरेक्टर स्लाइटी उनके साथ सीजन 1 के बाद भी स्टिक रहा, इसलिए सीजन 2 में उसको और एक्सप्लोर करना उनके लिए स्पेशल। देखते हैं एलियन अर्थ सीजन 2 की शूटिंग है जहां अगर बात की जाए स्टार्ट की जाने वाली है जून मंथ में ही। इसकी रिलीजिंग की अगर बात की जाए तो भी ऐसा कोई मंथ या कोई ईयर नहीं फाइनल किया गया, रहेगा इंतजार रिलीजिंग का। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से कॉकटेल 2 के ट्रेलर के बारे में। जहाँ बात की जाए फिल्म 19 जून को थिएटर रिलीज होने वाली है। फिल्म में शाहिद कपूर, क्रिति सेन, रश्मिका मंदाना लीड किरदारों में हैं और इसे होमी अदा जानिया डायरेक्ट कर रहे हैं। ट्रेलर में लव ट्राइंगल दिखाया गया जहाँ फ्रेंडशिप और ग्लैमरस चाउस का टोन दिखाया गया। तुम ही हो बंधु का रिटर्न भी नॉस्टैल्जिया ऐड करता है। मेकर्स ने ट्रेलर को मुंबई इवेंट में लॉन्च किया था। फिल्म को दिनेश विजान प्रोड्यूस कर रहे हैं और बात की जाए ये कहानी, फर्स्ट पार्ट भी अच्छा खासा प्यार बटोरते नजर आई थी। ट्रेलर ने जितना प्यार बटोरा है लगता है कॉकटेल का सीक्वल यानी कि कॉकटेल 19 जून को फिर से थिएटर्स में धमाल मचाते नजर आने वाली है। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगे सुपर रिकॉर्ड ट्रैक।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे? सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो, मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
7: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
6: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
8: प्यार हुआ, इकरार हुआ है प्यार से, फिर क्यों डरता है।
6: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
8: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
6: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग सुनना ना भूले। सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं मिल्ड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी के बारे में, जहाँ क्रिटिक्स ने नसीरुद्दीन शाह और जिम सर की परफॉर्मेंस को सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बताया। ओवरऑल टोन की बात करी जाए तो टाइटन की राइज पर बेस्ड एक इंस्पायरिंग बिजनेस ड्रामा है जो देखने लायक। कहा जाए कि 4 स्टार्स दिए गए इस कहानी को। टाइटन की फाउंडिंग स्टोरी को काफी एंगेजिंग तरीके से दिखाया गया। नसीरुद्दीन शाह साहब का किरदार लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, जहां इनको जे आर जी टाटा के रोल में हाईली अफेक्टिव बताया गया, जबकि जिम सर ने सरक्स द साइको स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दी। कहानी को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, आप भी जरूर देख के बताएगी क्या रिव्यू देते हैं आप इस कहानी को हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं धूम स्टार उदय चोपड़ा के बारे में, जहाँ कहानी

यानी कि सिनेमा गलियारों में फिर से वापसी करने जाने वाले हैं 16 साल बाद। लेकिन 16 साल बाद इनकी एंट्री एक्टर के तौर पर नहीं, राइटर के तौर पर होने वाली है। अल्फा का टीजर अगर बात करते हैं, यहाँ पे आलिया और बॉबी देओल्स का अपीयरेंस था, लेकिन उदय चोपड़ा अनएक्सपेक्टेड रिटर्न राइटर के तौर पर आए, ये देखकर फैंस बहुत खुश हुए। जब एक्टर का नाम स्टोरी क्रेडिट्स में मेंशन हुआ नजर आया मार्केटिंग, जहाँ पहला स्क्रीन प्ले रिलेटेड क्रेडिट 16 साल बाद होने जा रहा है। अब देखते हैं उदय चोपड़ा का ये कहानी जो है कितना ज़्यादा धमाल में जाती है, ताकि लोग कितना ज़्यादा पसंद करने वाले हैं इस कहानी को, अल्फा को। बाकी ऐसी चर्चा होंगी, उससे पहले एक और ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

0: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यह आज हमने सिनेमा की गलियारे में बहुत ही चर्चाएं करी कि कौन कौन सी नई कहानियां इस वीकेंड पर सिनेमा घरों में रिलीज होने को हैं तैयार, तो कुछ ऐसी वेब सीरीज या कुछ ऐसी कहानियां जो सिल्वर स्क्रीन के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने को है तैयार। जहां कहीं रोमांचिक और कॉमेडी कहानियां आएंगी तो कहीं होगा एक्शन और थ्रिल का डबल डोज, कहीं होगा पंजाबी गानों का तड़का तो कहीं होगा सस्पेंस हॉलीवुड की कहानियों का। डायरेक्टोरियल डेब्यू से लेकर के नए स्टार्स के डेब्यू होने वाले हैं सिल्वर स्क्रीन पर रहेगा इंतजार। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं लेकर के आता रहूंगा लेकिन आज नहीं, अब आपसे मुलाकात होगी मंडे के दिन सेम टाइम सेम जगह करूंगा ढेरों बातें। तब तक सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम को छट के, और जाते जाते ये खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए।
1: अरे

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: 钱呢？
1: और भैया क्या हाल चाल? हम अपने घर की फर्श चाहे जितनी अच्छी क्यों ना कर लें भैया, गाड़ी चलाना तो सड़कों पर ही है, सड़क पर तो गड्ढे ही गड्ढे हैं, उसका क्या?
2: अरे उसके लिए तो नगर निगम है ना।
1: कहाँ है, सालों से यही सुनते आ रहे हैं। ऐसा लगता है सड़क पर गड्ढे नहीं, गड्ढों के बीच में थोड़ी सी सड़क है। किसी भी गली में जाओ, लोग दिखे ना दिखे, जगह जगह पर कचरे का ढेर जरूर दिख जाता है। और अगर रात के अंधेरे में कहीं बाहर निकल जाओ तो घर से टॉर्च लेकर जरूर जाना भैया, क्योंकि स्ट्रीट लैम्प तो ऐसे गायब हो गई हैं जैसे दुनिया से डायनासोर। अब ऐसा नहीं चलेगा भैया, अब ब्यूटी पार्लर जाकर मेकअप हो ना हो, पर नगर निगम का मेकओवर होना बहुत जरूरी है।
3: तो आज से अपने अधिकारों का करेंगे सही इस्तेमाल, चुनेंगे वही जो होगा नगर के लिए सही।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

फन भी है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना तो मन भी है, मिले जे कोई चाहता है।

बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स एंट्री मारते ही सुपरस्टार बन जाते हैं और कुछ सालों तक ऑडियंस के दिल में क्वाइटली जगह बनाते रहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं जिमी शेरगिल की, जो दूसरे वाले एक्टर हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं नन अदर देन जिमी शेरगिल की। पंजाब का एक सिंपल लड़का जिसका असली नाम था जसजीत सिंह गिल, ना फिल्मी बैकग्राउंड ना इंडस्ट्री कनेक्शन, बस एक काम फेस और आंखों में मोस्टली ऑनेस्टी। 1996 फिल्म माचिस, गुलजार की फिल्म, सीरियस सिनेमा, और उस फिल्म में एक यंग जिमी शेरगिल। रोल छोटा था लेकिन इम्पैक्ट रियल। फिर आई एक फिल्म जिसने उनकी इमेज हमेशा के लिए चेंज कर दी, मोहब्बतें, राज आर्यन का वायलिन और उसके सामने एक इनोसेंट लवर करण। जिमी शेरगिल स्क्रीन पर एक्टिंग नहीं करते थे, वो बस नेचुरली फील होते थे। और कैसे बने वो सबकी फेवरेट, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे क्लास तो पीती जा सुन।

0: ये बॉलीवुड का सबसे अजीब रूल है, ऑडियंस आपको प्यार कर सकती है फिर भी इंडस्ट्री आपको सुपरस्टार नहीं बनाती। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं नन अदर देन चॉकलेट बॉय जिमी शेरगिल की। मोहब्बतें के बाद सबको लगा ये नेक्स्ट बिग रोमांटिक हीरो है। लुक्स थे, चार्म था, एक्टिंग भी थी, लेकिन 2000s का बॉलीवुड अलग था। वहां लाउड हीरोज चल रहे थे, जिमी सटल थे, रियल थे, और शायद इसी वजह से वो रेस में पीछे रह गए। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, ऑडियंस का ट्रस्ट। चाहे मेरे यार की शादी है हो या फिर तनु वेड्स मनु, स्क्रीन पर आते ही फील आता था ये बंदा जेन्युइन है। जिमी शेरगिल को लोगों ने कभी वर्शिप नहीं किया, लेकिन कभी इग्नोर भी नहीं किया। शायद इसीलिए वो आज भी किंग होकर भी किंग नहीं है। करेंगे जिमी शेरगिल के बारे में और भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान और मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।
1: पाका छोड़ दूं किसे चीज की ग्रीड को ना।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

बॉलीवुड हिस्ट्री में शायद कोई एक्टर इतनी बार ऑलमोस्ट सुपरस्टार नहीं बना जितनी बार जिमी शेरगिल बने थे। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं नन अदर देन जिमी शेरगिल की। ऑलमोस्ट बिगेस्ट रोमांटिक हीरो, ऑलमोस्ट टॉप स्टार, ऑलमोस्ट लीड एक्टर एवरीवन रिमेंबर्स। और फनी बात, उन्होंने कभी कंप्लेन भी नहीं किया, वो साइड रोल्स भी सेम सिंसेरिटी के साथ करते थे। और फिर इंटरनेट ने एक जोक बना दिया, जिमी शेरगिल हर मूवी में लड़की लूज कर देता है। ऑडियंस हंसी, लेकिन उस जोक के पीछे एक स्ट्रेंज सच्चाई भी थी। जिमी का ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी ही ऐसा था, सॉफ्ट, लॉयल, अंडररेटेड। वो बॉलीवुड के हीरो कम ऑडियंस के दोस्त ज्यादा लगते थे। और कैसे पंजाब ने उन्हें दिया दूसरा क्राउन, करेंगे इसके बारे में भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप लोग सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप सुन

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

जब बॉलीवुड ने जिमी शेरगिल को पूरी तरह सेलिब्रेट नहीं किया, तब पंजाबी सिनेमा ने उन्हें किंग बना दिया। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं जिमी शेरगिल की। और जिमी शेरगिल ने भले ही फिल्म माचिस में अपना रोल निभाया हो अच्छे से या फिर मोहब्बतें में, मगर उनको असली क्राउन पहनाया पंजाबी सिनेमा ने। जिमी शेरगिल ने पंजाबी फिल्म्स में एंट्री ली और वहाँ पिक्चर ही बदल गई। मेल करा दे रब्बा, कैरी ऑन जट्टा, दाना पानी, यहाँ ऑडियंस ने उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं स्टार ट्रीट किया। और इंटरेस्टिंग बात, जिमी कभी ओवर द टॉप पंजाबी हीरो भी नहीं बने थे। उनका स्टाइल वही था, कंट्रोल्ड, क्लासी, नेचुरल। बॉलीवुड में वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड थे, लेकिन पंजाब में रिस्पेक्टेड रॉयल्टी। और शायद इसीलिए पंजाब सिनेमा में आज भी जिमी को किंग कहा जाता है। और इसी के साथ साथ कैसे जिमी के रूट्स आज भी लोगों के दिलों में घर बसा गए हैं, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

कुछ एक्टर्स ट्रेंड करते हैं, कुछ एक्टर्स टाइम सर्वाइव करते हैं। जिमी शेरगिल सर्वाइव नहीं हुए, वो साइलेंटली रेलेवेंट रहे। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और कामयाबी की उड़ान में आज हम बात कर रहे हैं जिमी शेरगिल की। बॉलीवुड एक फास्ट इंडस्ट्री है, यहाँ हर फ्राइडे नए फेजेस आते हैं, नए स्टार्स, नए इन्फ्लुएंसर्स, नए नेक्स्ट बिग थिंग। और इस नॉइस के बीच में एक एक्टर है जो कभी लाउडली अटेंशन डिमांड नहीं करता। नाम है जिमी शेरगिल। ना अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सीज, ना फेक लार्जर देन लाइफ इमेज, ना सोशल मीडिया पर ओवर ब्रांडिंग। फिर भी जब भी उनका नाम आता है, ऑडियंस के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। क्यों? क्योंकि जिमी शेरगिल सिर्फ एक्टर नहीं लगते, वो रियल इंसान लगते हैं। उनके कैरेक्टर्स परफेक्ट नहीं होते, कभी हार्ट ब्रोकन लवर, कभी इग्नोर्ड हस्बैंड, कभी लॉयल दोस्त, कभी वो बंदा जो एंड तक सब सही करने की कोशिश करता रहता है। और शायद इसीलिए ऑडियंस उनसे कनेक्ट करती है, क्योंकि रियल लाइफ में भी मोस्ट पीपल आरंट अल्फा हीरोज, मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग, एग्जैक्टली लाइक जिमी कैरेक्टर। एक और इंटरेस्टिंग बात नोटिस करना, जिमी शेरगिल कभी सीन स्टील करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन समहाउ वो याद रह जाते हैं। तनु एड्स मनु में देखो, जब मूवी में केओस था, कॉमेडी थी, लाउड कैरेक्टर्स थे, लेकिन जिमी का कैरेक्टर काम, मैच्योर और हर्ट, और ऑडियंस साइलेंटली उसके साइड पर थी। इंटरनेट ने मीम्स बना दिए, हर मूवी में जिमी शेरगिल की बंदी चली जाती है। फनी था, लेकिन उस जोक ने उन्हें और रिलेटेबल बना दिया, क्योंकि ऑडियंस को लगा ये बंदा हम जैसा अनलकी है। और ऑनेस्टली किसी एक्टर के लिए ये बहुत रेयर चीज होती है। पीपल डोंट जस्ट वॉच हिम, पीपल फील बैड फॉर हिम। पर पंजाबी सिनेमा में उन्होंने जो रिस्पेक्ट अर्न की, वो भी ओवरनाइट नहीं आई थी, सालों लगे, कंसिस्टेंसी लगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट ईगो कंट्रोल। कई एक्टर्स जब लीड हीरो फेज से बाहर आते हैं तो इनसिक्योर हो जाते हैं, लेकिन जिमी शेरगिल उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स भी डिग्निटी के साथ किए, नेगेटिव शेड्स भी किए, कॉमेडी भी की, सीरियस रोल्स भी किए, वो अडेप्ट करते गए। और यही डिफरेंस होता है फेमस एक्टर और लास्टिंग एक्टर में। आज अगर आप किसी भी एज ग्रुप के मूवी लवर से पूछो जिमी शेरगिल कैसे लगते हैं, तो उनका आंसर यूजुअली सेम होता है, अंडररेटेड, अच्छा एक्टर है, बहुत जेन्युइन लगते हैं। और किसी एक्टर के लिए ये रिस्पेक्ट बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि स्टारडम टेम्पररी होता है, लेकिन गुडविल वो सालों साल चलती है। जिमी शेरगिल ने शायद बॉलीवुड का बिगेस्ट थ्रोन कभी नहीं जीता, लेकिन उन्होंने एक और रेयर चीज जीती, ऑडियंस का ट्रस्ट। और फिल्म इंडस्ट्री में हर एक्टर फेमस हो सकता है, लेकिन हर एक्टर अपना सा नहीं लग सकता। तो ये थी जिमी शेरगिल की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। नंबर है हमारा 9654896896। अभी फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से फिर से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कभी कभी लाइफ ना सीधे आंसर्स नहीं देती, वो सिर्फ एक सिचुएशन हमें देके छोड़ जाती है और बोलती है अब डिसाइड तुम करो भाई, और वही डिसीजन जो तुम्हें भीड़ का हिस्सा बना देता है या फिर भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। खैर, इसी गाने के साथ स्वागत है, शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड और मैं हूँ आपकी गीत। और आज जो कहानी मैं शुरू करने जा रही हूँ वो किसी ब्रांड की कहानी नहीं है, वो किसी करोड़ अरब के बिजनेस की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक फैसले की। सो वेलकम टू बिजनेस अनप्लग्ड। और मैं यहाँ उन लोगों की बात करती हूँ जिन्हें दुनिया आज सक्सेसफुल कहती है, लेकिन जिन्होंने अपनी लाइफ के सबसे शुरू के फेज में सिर्फ कंफ्यूजन देखा था, सिर्फ फियर, सिर्फ अनसर्टेनिटी। बिजनेस अनप्लग्ड एक ऐसा शो है जहां सक्सेस को सेलिब्रेट करने से पहले हम स्ट्रगल को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली सक्सेस तब मीनिंगफुल होती है जब हमें पता हो उसके पहले क्या क्या टूटा था। वो मोमेंट जब एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी से हाँ बोल के नई जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ दरवाजे के हैंडल पर था पर दरवाजा अभी खुला नहीं, अगला कदम क्या होगा, वो दरवाजा खुलेगा या बंद रहेगा, और जो डिसीजन लिया गया क्या वो सही साबित होगा, ये जानने के लिए मेरे साथ आपको बने रहना होगा मेरे शो में जिसका नाम है बिजनेस अनप्लग्ड। अगले लिंक में उस कदम के बाद की कहानी बताऊंगी जहां सोच सिर्फ अपनी नहीं रहेगी बल्कि पहली बार हकीकत से टकराएगी। सो स्टे ट्यून्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

अगेन वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ बनी हुई हूँ गीत. और कभी आपने सोचा है कि देश का बिजनेस बैकबोन बनता कैसे है? फैक्ट्रीज से, ब्रांड से नहीं, बल्कि लोगों की जिद से. और आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाली हूँ जिनका नाम लेने से पहले थोड़ा सा रुकना जरूरी लगता है. इसलिए नहीं कि नाम थोड़ा मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि नाम के साथ वक्त जुड़ा हुआ है. आज मैं बात करने वाली हूँ घनश्याम दास बिरला के बारे में, यानी कि जीडी बिरला. ये सिर्फ एक बिजनेसमैन का नाम नहीं है, ये एक दौर का नाम है. वो दौर जब इंडिया अपनी पहचान ढूंढ रहा था और कुछ लोग सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं बल्कि पूरे देश का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे थे. जीडी बिरला किसी शॉर्टकट का हिस्सा नहीं रहे, किसी ओवरनाइट सक्सेस का एग्जांपल नहीं. वो उस जेनरेशन से आते हैं जहां चीजें धीरे बनती थीं, पर गहरी बनती थीं. और आज जब हम बिरला ग्रुप बोलते हैं ना, तो लोग कंपनीज देखते हैं. पर मैं आज कंपनीज की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ उस इंसान की जब बिरला एक जिम्मेदारी थी, ब्रांड नहीं. जीडी बिरला ने बिजनेस एक ऐसे वक्त में शुरू किया था जब इंडिया ब्रिटिश रूल के नीचे था, पर उस सिस्टम में इंडियन बिजनेसमैन को सिर्फ एक रोल दिया गया था, सप्लायर्स का. डिसीजन लेने का हक वो उनके लिए नहीं था, पर जीडी बिरला ने इस रोल को एक्सेप्ट नहीं किया. उन्होंने ये सोचा कि अगर इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है तो इंडस्ट्री भी इंडियन होनी चाहिए और कंट्रोल भी. ये सोच आज सिंपल लग सकती है, पर उस वक्त ये एक बहुत बड़ा रिस्क था. उनके सामने सिर्फ बिजनेस चैलेंजेस नहीं थे, उनके सामने सिस्टमैटिक रेजिस्टेंस थी, ब्रिटिश ऑफिसर्स का डाउट, परमिशंस का डिले और हर कदम पर ये फीलिंग कि आप आउटसाइडर हो. और यहीं से उनके स्ट्रगल की असली कहानी शुरू होती है. न सिर्फ पैसे कमाने के स्ट्रगल बल्कि इज्जत के लिए स्ट्रगल. जीडी बिरला ने अपनी फैक्ट्रीज खड़ी की अपनी टर्म्स पे नहीं, सिस्टम के बीच रहकर. और हर स्टेप पर उन्होंने ये प्रूव किया कि इंडियन एंटरप्रेन्योर सिर्फ ट्रेडर्स नहीं, लीडर्स भी हो सकते हैं. लेकिन जैसे जैसे उनके कदम बढ़ते गए, प्रेशर भी बढ़ता गया, क्योंकि अब वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक सिंबल बन रहे थे. और जब आप सिंबल बन जाते हो ना, तो आपको चूज करना पड़ता है, चुप रहना है या स्टैंड लेना है. और जीडी बिरला के सामने कैसा डिसीजन आने वाला था,

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।

Once again, welcome back. You are listening to Business Unplugged और मैं बात कर रही हूँ GD बिरला के बारे में। कभी कभी ना जब इंसान के डिसीजन बहुत बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है ये सब अचानक हुआ होगा, पर सच ये है कोई भी बड़ा डिसीजन कहीं ना कहीं बचपन में ही तय हो जाता है, क्यों है ना। और आज मैं GD बिरला के उस हिस्से की बात करना चाहती हूँ जहाँ से उनकी सोच ने शेप लेना शुरू किया था। वैसे ही कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन बचपन के बारे में बात करना भी तो जरूरी है ना दोस्त। वो वक्त जब उनके पास पावर नहीं थे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी। घनश्याम दास बिरला जी का बचपन किसी पैलेस में नहीं गुजरा, ना ही किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्फर्ट था। वो एक मारवाड़ी बिजनेस फैमिली से आए जहाँ पैसा इम्पोर्टेंट था, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट था डिसिप्लिन। उनके घर में बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट का जरिया नहीं माना जाता था, बल्कि बिजनेस एक जिम्मेदारी था, एक वर्क था, और ये चीज उनके दिमाग में बहुत गहरी बैठ गई। उनकी एडुकेशन भी सिर्फ डिग्री तक लिमिटेड नहीं रही, वो चीजों को देखते थे, लोगों की सुनते थे और फिर क्वाइटली अपना कंक्लूजन बना लेते थे। GD बिरला ने बहुत छोटी उम्र में समझ लिया था कि दुनिया सिर्फ मेहनत से ही नहीं चलती, दुनिया पावर स्ट्रक्चर से चलती है। और ब्रिटिश इंडिया में पावर का मतलब था कंट्रोल, कौन डिसाइड करेगा, कौन रूल बनाएगा और कौन सिर्फ फॉलो करेगा। ये सवाल उनके दिमाग में सिर्फ बिजनेसमैन के नहीं, एक इंडियन के तौर पर भी उठ रहे थे। शायद इसीलिए जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तब वो सिर्फ मार्केट नहीं देख रहे थे, वो सिस्टम भी देख रहे थे। और जब सिस्टम को आप समझ लेते हो ना, तब उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर पाते हो। और यहीं से हम उस मोमेंट के पास आ जाते हैं जहां पिछले लिंक में हम रुक गए थे। GD बिरला के सामने एक चॉइस खड़ी थी, एक तरफ था चुप रहकर ग्रो करना स्लोली सेफली, दूसरी तरफ था बोलना, स्टैंड लेना और कंसीक्वेंसेस फेस करना। और ये चॉइस सिर्फ बिजनेस की नहीं थी, ये चॉइस थी आइडेंटिटी की। क्योंकि अगर वो चुप रहते तो शायद उनका बिजनेस चल जाता, पर उनकी सोच वहीं रुक जाती, और अगर वो बोलते तो रिस्क था कि सिस्टम उन्हें टॉलरेट ना करे, परमिशन डिले हो जाए, प्रोजेक्ट अटक जाए और प्रेशर बढ़ जाए। इस डिसीजन के वक्त उनके पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक चीज थी, वो वैल्यूज जो बचपन से उनके साथ थी, वैल्यूज जो उन्होंने घर से सीखी थी, एडुकेशन से समझी थी और एक्सपीरियंस से और स्ट्रांग हुई थी। और फिर उन्होंने वो किया जो उस दौर में बहुत कम लोग कर पाते। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पिक्चर के लिए सोचा, पर इसके रिजल्ट इमीडिएट नहीं आए, एक्चुअली इसके रिजल्ट सबसे पहले उनके खिलाफ गए। और यहीं से GD बिरला के फेस का सबसे अनकंफर्टेबल फेस शुरू हुआ, वो फेस जहां प्रिंसिपल्स और प्रोग्रेस टकरा जाते हैं। आज मैं इस कहानी को इसी पॉइंट पर रोक रही हूं, क्योंकि अगला लिंक सिर्फ स्ट्रगल नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा कि जब आप सही होते हो तब भी सिस्टम आपको कितना टेस्ट करता है। क्योंकि GD बिरला का स्टैंड उनके बिजनेस को स्लो कर गया, फिर उन्हें और ज्यादा स्ट्रांग कर गया, ये मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद। तब तक आप सुनते रहिए बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

हे ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लव।

डीनो जेम्स की आवाज में बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक, और इसी ट्रैक के बाद वेलकम बैक। कभी कभी ना जिंदगी हमें तुरंत पनिश नहीं करती, वो बस टाइम ले लेती है। जी डी बिरला के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। इन्होंने जो स्टैंड लिया था उसकी रिएक्शन तुरंत नहीं आए, पर जब आए वो धीरे धीरे हर तरफ से आए। ब्रिटिश सिस्टम ऐसे काम करता था, डायरेक्ट नो नहीं बोलता, वो रुकावट डालता था, डिले करता था, आपको थका देता था, परमिशन अटकने लगी, फाइल्स मूव नहीं होती थी, मीटिंग्स कैंसिल होती थी, और हर बार रीजन एक ही होता, प्रोसेस। पर जी डी बिरला जानते थे ये सिर्फ प्रोसेस नहीं है, ये मैसेज है। मैसेज ये है कि तुम अपनी लिमिट्स भूल रहे हो, और जब सिस्टम आपको ये याद दिलाने लगे ना, तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस हिलता है। लोगों ने एडवाइस देनी शुरू कर दी, थोड़ा एडजस्ट कर लो, बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों को अलग रखो, ज्यादा बोलना जरूरी है क्या? और ये एडवाइस गलत भी नहीं थी, क्योंकि रियलिटी ये थी कि जी डी बिरला के पास बहुत कुछ दांव पे लगा था। उनकी फैक्ट्रीज, उनके लोग, उनकी रेपुटेशन, और उनके साथ उन लोगों का फ्यूचर जो उनके साथ काम कर रहे थे। और यहीं से प्रेशर सिर्फ बाहर का नहीं रहा, प्रेशर अंदर का भी हो गया। कभी कभी ना सबसे मुश्किल सवाल बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है। क्या मैं ज्यादा दूर आ गया हूँ? क्या मेरी सोच मेरी जिम्मेदारियों से बड़ी हो गई है? जी डी बिरला एक ऐसे बिजनेसमैन थे, हाँ, पर वो इरेस्पॉन्सिबल नहीं थे। वो जानते थे अगर उनकी वजह से एक भी फैक्ट्री बंद होती है तो उसका बोझ सिर्फ उन पे नहीं पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने हर डिसीजन और ज्यादा सोच के लेना शुरू कर दिया। और इसी बीच एक और चीज चल रही थी, ब्रिटिश अथॉरिटीज उनको क्लोजली देख रहे थे, कौन मिल रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सा आइडिया किस मीटिंग में बोल रहा है। जी डी बिरला समझ गए थे ये बिजनेस सिक्योरिटी नहीं है, ये कंट्रोल है। और जब कंट्रोल और ज्यादा टाइट हो जाता है तो सबसे पहले आपको फ्रीडम से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और इसी फेज में उनके करीबी लोग भी थोड़ा सा क्यूरियस हो गए। अब थोड़ा रुक जाते हैं ना, बाद में देखेंगे। और शायद यहीं पे कहानी का सबसे लोनली फेज शुरू होता है, क्योंकि जब आप बिल्कुल गलत भी नहीं होते और बिल्कुल सेफ भी नहीं होते तो आप अकेला पड़ जाते हो। जी डी बिरला के सामने अब एक नया सवाल खड़ा था, बिजनेस को बचाया जाए या प्रिंसिपल्स को। और ये सवाल सिर्फ फिलॉसफी का नहीं था, इस सवाल का जवाब उनके पूरे एम्पायर की डायरेक्शन डिसाइड करता। और आगे क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगी इस गाने के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं हूँ गीत। आज हम उस दौर में खड़े हैं जहाँ चीजें दिख रही हैं पर बोली नहीं जा रही। जीडी बिरला के आसपास सब कुछ पहले जैसा ही लगता था। फैक्ट्रीज चल रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, फाइल्स मूव हो रही थी, पर जो चीज मिसिंग थी वो थी राह की क्लैरिटी। सिस्टम ने उन्हें रोका नहीं, बस इतना किया कि आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया। और जब ऐसा होता है ना तो समझ आ जाता है कि ये सिर्फ डिले नहीं है, ये एक सिग्नल है। जीडी बिरला इस सिग्नल को इग्नोर करने वाले लोगों में से नहीं थे। इन्होंने बोलना कम कर दिया, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। और ये साइलेंस सिर्फ बाहर का नहीं था, ये साइलेंस उनके डिसीजंस में भी आ गया। इस फेज में इनके सामने एक टेंशन नहीं थी, इनके सामने जिम्मेदारियों की एक पूरी लाइन खड़ी थी। वो लोग जो उनके फैक्ट्रीज पर काम करते थे, वो फैमिलीज जो इनडायरेक्टली उनके हर डिसीजन से जुड़ी हुई थी। जीडी बिरला के लिए ये कभी सिर्फ बिजनेस नहीं रहा, इसीलिए जब सिस्टम इन्हें प्रेशर में ला रहा था तो वो सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं सोच रहे थे, वो कॉन्सिक्वेंसेस सोच रहे थे। और इसी बीच उनके दिन का एक हिस्सा नंबर से निकाल कर कॉन्वर्सेशन में चला गया। ऐसी बातें जो न्यूज़पेपर में नहीं छपती, ऐसी मीटिंग्स जहां सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं होती, वहां बात होती है इंडिया के फ्यूचर की, इंडस्ट्री की डायरेक्शन की। और इस बात का डिसीजन लेने का हक किसी के पास होना चाहिए। जीडी बिरला सिर्फ बिजनेसमैन की तरह रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो अपनी पोजीशन को समझने लगे थे। और जब आप एक बार ये समझ जाते हो ना कि आप सिस्टम के लिए सिर्फ एक नाम नहीं रहे, तो फिर न्यूट्रल रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि अपनी कोशिश को और ज्यादा गहरा कर दिया। और शायद ये खामोशी ही थी जो सिस्टम को अनईजी कर गई, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि जीडी बिरला क्या बोलेंगे, सवाल ये था कि वो क्या करेंगे। तो अब आगे का रास्ता सीधा नहीं है, पर एक बात क्लियर है, अब जो भी होगा वो बिजनेस का हिस्सा नहीं होगा। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड। स्टे विद मी।

स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ। और आज मैं उस इंसान की कहानी को खोल रही हूँ जिसके नाम के साथ सिर्फ बिजनेस एम्पायर नहीं जुड़ता बल्कि एक सोच, एक प्रिंसिपल और एक लेगेसी जुड़ती है। जी डी बिरला के डिसीजन सिर्फ फैक्ट्रीज के लिए नहीं थे, वो डिसीजन थे पूरे देश के इकोनॉमिक लैंडस्केप के लिए। जहाँ पहले इन्होंने खामोशी चुनी थी, अब उनकी स्ट्रेटेजी ने शेप लेना शुरू किया। रिस्क बहुत था, रेजिस्टेंस और ज्यादा थी, पर जी डी बिरला ने अपनी वैल्यूज और विजन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फैक्ट्रीज ने नाम किया, टीम्स ने फॉलो किया और धीरे धीरे सिस्टम को भी समझ

सटल एक्शन और कंसिस्टेंसी, और ये जर्नी, ये स्ट्रगल और कैलकुलेटेड करेज, ये उनको लेगेसी बनाता गया। और जब आप इस कहानी के एंड पे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं जो डिसीजन जीडी बिरला ने लिए, क्या वो सिर्फ बिजनेस के लिए थे या कुछ ज्यादा, कुछ टाइमलेस के लिए। यही वो मोमेंट है जहां आप खुद फील करेंगे, समझेंगे और आप इंस्पायर भी होंगे, क्योंकि इम्पैक्ट कभी लाउडली अनाउंस नहीं होता, वो सटल और लास्टिंग होता है। और ऐसे ही एक इंसान का स्ट्रगल, एक विजन और एक लेगेसी हमारे सामने खड़ी होती है। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड। मेरा वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आप सुनते रहो रेडियो महारानी कुछ हटके। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

क्या कभी आपने नोटिस किया है, चेहरे पर सबसे छोटी जगह पर सबसे ज्यादा नजर वही आती है, एक छोटा सा लाल बिंदु, नाक ना होंठ, फिर भी सबसे पहले वही दिखता है। वो कहा है कि चेहरे की भीड़ में एक बिंदु अलग सा चमकता है, जैसे खुद को याद दिलाता हो मैं हूँ। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ हम बात करेंगे उस छोटी सी पहचान की जो सदियों से महिलाओं की खूबसूरती का राज रही है, यानी एक बिंदु। आखिर बिंदु का मतलब क्या है, चलिए जानते हैं। बिंदी शब्द आया है संस्कृत के शब्द बिंदु से, जिसका मतलब होता है बूंद, पॉइंट या फिर शुरुआत। हिंदू दर्शन में बिंदु को माना गया है सृष्टि का आरंभ, जहां से सब कुछ निकला। सोचिए चेहरे पर जो सबसे छोटा है, दर्शन में वही सबसे बड़ा है। बिंदी के बारे में ये सारी चीजें जान ही रहे हैं तो वापस आकर जानेंगे आखिर कितनी पुरानी है ये। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कैसे हम कहेंगे कि हल ही नहीं सकता है?
1: बिल्कुल
0: क्या है, अंदर से कुंडी मारी है, बाहर से कुंडी नहीं है कि कोई भी आके खोल देगा। ये कुंडी मैंने मारी है, अंदर से मारी है, इसलिए मुझे ही उठकर उस कुंडी को खोलना होगा, और कोई इस कुंडी को खोल ही नहीं सकता है। इसलिए इतनी हिम्मत, इतना करेज अपने आप में लाएं और इस कुंडी को खोलें, और खोल करके लोगों को अंदर आने दें या खुद बाहर आ जाएं।
1: बिल्कुल सही बात,
0: क्योंकि उस बंद कमरे में घुटन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है।
1: बिल्कुल सही बात है।
2: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक।

0: समझते ना बैठी।
1: ब्रेक के बाद वेलकम बैक, शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
2: क्या सैडनेस, एंगर या फ्रस्ट्रेशन को फील करना भी हेल्दी होता है? आप दोनों का इस पे क्या कहना है?
3: आपको क्या लगता है, सैडनेस में मिलती है सुकून?
2: नहीं, बट कभी कभी हाँ।
3: एक्चुअल में सैडनेस में कभी सुकून है ही नहीं। वो जैसा कि पहले भी बताया है कि हमने उस चीज को समझ लिया है कि हाँ वो सुकून दे रहा है, लेकिन सुकून नहीं है, क्योंकि हम सदा सैडनेस में नहीं रह सकते, लेकिन सदा खुश
2: बिल्कुल
3: रह सकते हैं। सदा खुश रहने वाला व्यक्ति, इसका मतलब खुशी मेरे लिए परमानेंट है, लेकिन दुख परमानेंट नहीं है, है ना। दुख से कभी भी हमें जो कहे कि एक हेल्दी कहे, वो नहीं हो सकता। जब हेल्दी नहीं रहते तभी दुख आता है, तभी फ्रस्ट्रेशन होती है, तभी सैडनेस होती है। तो हेल्दी तो हम इसको कभी भी किसी भी तरीके से नहीं कह सकते हैं। सिर्फ हमने अपने आप को ये समझा लिया है कि शायद यही जीवन का दस्तूर है और यही जीवन है कि हाँ ये तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कई लोग कहते हैं एंगर बहुत ज़रूरी है, अगर थोड़ा गुस्सा नहीं किया जाए तो काम ही नहीं होता। एक्चुअल में दोष मैं नहीं कहूँगी आज के बच्चों का है या किसी का है, दोष है हमारी जो चलता आ रहा है। क्योंकि जब हमारी दादी हुआ करती थी तो उस समय पर क्रोध करना, माना उनकी सिर्फ आँख ही अगर वो दिखा दे तो उसको ही क्रोध समझ लेते थे, गुस्सा कर रहे हैं। थोड़ा समय बदला तो एक थप्पड़ लगा दिया करते थे, तो पता चला कि बहुत देर तक बात करने के बाद एक थप्पड़ लगने पे काम होता है। तो इतना पेशेंस था उनके पास कि एक थप्पड़ तक वो टिल वेट करते थे, वो पेशेंस में रहते थे। और समय बीता तो वो चीज़ें बढ़ गई। अब जो जनरेशन है उनको ये लगता है कि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही माइंड में सेट कर रखा है। आप किसी भी व्यक्ति से आज मिलेंगे, अगर आज की जनरेशन से, तो यही कहेंगे हमारा टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। और ये कहते कहते कहते उनके पास सच में ही उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि अब टाइम नहीं है कि हम पेशेंस रखें, अब टाइम है बस मारो और काम करो, काम करवाओ, क्योंकि वही उनकी नेचर बन रही है। लेकिन वो नेचर क्या उनके लिए, खुद से पूछ के देखें, नेचर वो अच्छी होती है जो दूसरों को देना, वही अच्छा है जो मुझे खुद के लिए पसंद है। क्या मुझे कोई थप्पड़ मार के काम कराए तो मुझे पसंद होगा, अच्छा लगेगा? क्या मुझे कोई गलत बोल करके काम कराना चाहे तो क्या हम करेंगे? या 24 घंटे हमें गलत ही बोलता रहे तो क्या मेरी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? हमारा मन ही वहाँ से हट जाएगा। तो ऐसे ही सारी दुनिया के अंदर हर व्यक्ति ऐसा ही है, जिसे गुस्सा नहीं चाहिए, जिसे प्यार चाहिए। लेकिन आज प्यार की परिभाषा हमने बहुत खराब कर दी है, प्यार का पता ही नहीं है किसे कहते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, प्यार का मतलब है अगर मैंने आपसे प्यार किया है तो प्यार का मतलब है कि मैं आपके लिए कितना एफर्ट कर सकती हूँ। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम पहले समझें कि मुझे क्या चाहिए। तो क्या मुझे दुख में खुशी मिलती है, क्या मुझे उदासी में कभी खुशी मिलती है, या मुझे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो क्या मेरी एनर्जी बढ़ती है या हमारी और घट जाती है? घटती है ना। तो ऐसी ही जो चीज़ मेरे जीवन में से डे बाई डे घटा रही है चीज़ों को, तो वो कैसे हम कहेंगे कि हाँ ये हेल्दी है? तो ये हेल्दी नहीं होता है। हेल्दी जो चीज़ है वो खुशी ही हेल्दी है, इसीलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। कभी ये नहीं कहा गया है रोने जैसी खुराक नहीं या दुख जैसी खुराक नहीं, हमेशा यही कहा जाता है खुशी जैसी खुराक, क्योंकि वही हमें हेल्दी बनाता है, वही हमारी हर सिचुएशन को सॉल्व करता है।
2: बिल्कुल सही बात है। प्रिया जी आपका क्या कहना है इस पे?
4: जी जैसे कि कहा कि नेगेटिव वर्ड्स हैं और नेगेटिव वर्ड्स के साथ आपने एक एक पॉजिटिविटी जोड़ रखी कि हेल्दी हो सकता है क्या, तो वही बात है कि जैसे मैं ये कहूँ कि हर व्यक्ति की क्षमता के ऊपर डिपेंड है कि कितना भी नेगेटिव होने पर वो पॉजिटिव रह सकता है, ये आपकी अपनी क्षमता है। हर एक के साथ ये लागू नहीं होता। सैडनेस जो कि नॉर्मल नहीं है, एंगर कहें या फिर फ्रस्ट्रेशन कहें, ये सब नॉर्मल इमोशंस नहीं है। इसके लिए हमारे अंदर बहुत एनर्जी चाहिए, इसको व्यक्त करने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए और इसको अंदर रखने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए। तो यानी हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है नेगेटिव को एक्यूमुलेट यानी संभालने के लिए, रखने के लिए। और वहीं पे आपने एक नेक्स्ट जो वर्ड डाला है वो हेल्दी, तो हेल्दी इज हेल्दी, ये तो है ही पॉजिटिव। तो जैसे कहते हैं कि जहर, जहर कभी अमृत हो सकता है क्या?
2: नहीं।
4: नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है अगर धीरे धीरे धीरे धीरे एक पर्सन जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था, चाणक्य जी ने दिया था, वही जहर उनको इतना बलशाली बना देता है कि शत्रुओं के आगे उनका जहर काम नहीं करता है ना, शत्रुओं के दिए गए जहर से चंद्रगुप्त मौर्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बात यही है कि आपने किस तरीके से लिया है, कैसे लिया है, उसको किस दिशा में लिया है। मैंने अपने जो क्रोध है उसको अपनी ऊर्जा बना ली है, ठीक है, मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन जो है उसको अपना ईंधन बना लिया है अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तो दिस कैन बी हेल्दी। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये चीजें कभी भी हेल्दी नहीं होती, क्योंकि हमारी ये नेगेटिविटी को बढ़ाती है, नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा खपत होने लगती है।
2: बिल्कुल,
4: यानी अंदर आग लगी है तो अंदर का जो कपूस है, जो पॉजिटिव साइड है, उसको वो जलाई चली जा रही है। अगर अच्छाई जल रही है और उसकी अग्नि बढ़ती चली जा रही है तो आप खुद समझ सकते हैं कि पूरा ही घर एक दिन जल जाने वाला है, तो ये कहाँ से हेल्दी हो सकता है।
2: सही बात।
1: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: ज्योति जी, सोशल मीडिया ने टॉक्सिक पॉजिटिविटी को कैसे नॉर्मलाइज कर दिया है?
2: इसकी अगर हम बात कहें तो टॉक्सिक शब्द को पहले हम ये चीज समझेंगे कि ये चीजें हम जो लोग देख रहे हैं, टॉक्सिक ही चीजों की तरफ हमारा ध्यान है, फोकस है जो हम ले रहे हैं सोशल मीडिया में। आजकल सारी जगह आप देखेंगे तो नेगेटिविटी का ही बोलबाला है, हर जगह नेगेटिव ही न्यूज़ है। चाहे आप न्यूज़पेपर उठा लें, चाहे आप टेलीविज़न ऑन करें, चाहे आप मोबाइल्स में कोई स्क्रॉल करते करते कोई मूवी देख रहे हैं या कोई चीज़, उसमें क्या चीज़ हम देख पा रहे हैं? सिर्फ लड़ाई झगड़ा, नेगेटिव चीज़ें, जो कि देखते देखते हमारे अंदर वो इमोशंस बना रही हैं, वैसा ही हमें बनाती जा रही है अंदर से। क्योंकि हम कोई भी चीज़ जितना सुनने से नहीं सीखते उतना देखने से सीखते हैं। तो जो चीज़ हम देख रहे हैं वही चीज़ हमारे अंदर इंटरनल, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर वो जा करके प्रिंट हो रही है। और जब वो प्रिंट हो जाती हैं तो नेचुरली मेरे भी जो नेचर है, मेरे भी बिहेवियर में वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। आज किसी बच्चे ने देखा कि छोटेपन में एक छोटी सी बंदूक हाथ में दे दी गई कि खिलौना है। अब उसे वो खिलौना चलाने आया, थोड़े दिन बाद उसने बड़ा वो ले लिया।
1: सही बात।
2: तो वो चीज़ क्या है उसका इम्प्रेशन, फिर उसको ये लगता है कि नहीं मैं तो ये चलाऊं तब मुझे आनंद आएगा। तो वहाँ कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया, हम क्या चीज़ उसमें देख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं ये नहीं कहती कि पूरा ही सोशल मीडिया ख़राब है, लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर हम खराब चीज़ देखते जाएंगे तो नेचुरली हमारे अंदर वो नेगेटिविटी ही पनपेगी, वही टॉक्सिक बन जाएगा। आज कैसे बच्चों को सुसाइड करने का इतनी हिम्मत हो रही है, कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया ही इसका रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि उनको वो ओपिनियन मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब एक सीरियल आया करता था, सबने देखा, आपने भी सुना होगा और देखा भी होगा, क्राइम पेट्रोल नाम से, तो जी सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल, तो उसमें एक बच्चे का इंटरव्यू आया। एक बच्चे ने जो कि घर में रहता था और बहुत छोटेपन से ही वो टीवी पे देखता था और उसको क्राइम पेट्रोल ही बहुत अच्छा लगता था, वो देखने लगा। उनके घर में ही, जिसके घर में वो काम कर रहा था और बड़े बच्चे की तरह उसको वो पालते थे, उनके उसके मन में उसको देख करके आया कि मैं भी ऐसा करूं। और उसने घर में छोटी बच्ची जो कि उसके पास ही रहती थी, उसको ही भैया कहती थी, उसके साथ ही, सिर्फ उसने उसको देख करके उसको भी मार दिया और घर का सारा सामान लेकर के चला गया। जब पकड़ में आया, क्योंकि प्रोफेशनल तो था ही नहीं, जब पकड़ में आया तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे मन में ये सारी जितनी भी प्लानिंग थी ये कहाँ से तुम्हारे माइंड में आई, कौन तुम्हें गाइड कर रहा है? तो कहा मैं क्राइम पेट्रोल बहुत देखता था और उससे मैंने अपने माइंड को जो है मैनेज किया, मुझे सारी टेक्निक्स आई, कहाँ मुझे अपने फिंगरप्रिंट्स हटा देने हैं, कहाँ कैसे करना है, वरना हर एक चीज़। तो कहीं ना कहीं मीडिया में ये चीज़ों को जो हाईलाइट किया जा रहा है तो उसके कारण बहुत सारी चीज़ें बच्चों पर इफ़ेक्ट डाल रही हैं। तो इसके लिए पॉजिटिव चीज़ों को जितना हम दिखाएंगे, जितना हम बताएंगे और उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे तो नेचुरल पॉजिटिविटी ही लोग लेंगे। तो इसके लिए सोशल मीडिया बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है, पॉजिटिविटी देने के भी और नेगेटिव देने के भी।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: प्रिया जी, क्या हम बिना टॉक्सिक हुए पॉजिटिव रह सकते हैं?
2: बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं, अपने दादा दादी जी को भी देखते हैं, और ये फिर भी अगर कहीं ना कहीं टॉक्सिक होते हैं तो हम उनके पीछे का भी सोच सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: कि जो बिल्कुल ही चक्की पे आटा पीसते थे और गाय भैंस ही जो उनको पालन करते थे, पालते थे, उनके द्वारा ही अपना जीवन संचालन करते थे, जहाँ लाइफ बहुत स्लो थी, जो हमारे दिशा में हम देखते हैं तो लाइफ बहुत स्लो थी, लेकिन लाइफ स्लो होने का मतलब सोच भी बहुत स्लो थी। तो सोचने में स्लोनेस लाना, इसका मतलब नंब होना नहीं होता या डम्ब होना नहीं होता, स्लो होने का मतलब है उतना ही स्पिरिचुअल थे। तो जितना हम स्पिरिचुअलिटी को आज भी अपने जीवन में महत्व देते हैं, अपने लाइफ में बढ़ाते हैं स्पिरिचुअलिटी को, तो उतना ही हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और इतना ही हम अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो अपने कहा कि टॉक्सिक हुए बिना हम अपना जीवन जो है बहुत अच्छे से पॉजिटिव रह सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल, क्योंकि आज हमें लगता ही नहीं कि टॉक्सिक हुए बिना ऐसा हो सकता है। हम गुस्सा हुए बिना किसी से अपने काम नहीं करवा पा रहे, हम गुस्सा हुए बिना कोई काम खुद भी नहीं कर पा रहे। आसपास जितने लोग हैं, हमें लगता है गुस्सा कर देने से वो फास्ट करेंगे, जल्दी करेंगे और रिजल्ट्स भी मिलते हैं, तो हमें लगता है कि गुस्सा तो करना जायज़ है, बनता है। और इसीलिए आज की डेट में एक बहुत बड़ा वर्ड आता है कि गुस्सा तो नॉर्मल है। वाकई में अगर देखें तो नॉर्मल तो नहीं है, गुस्सा नॉर्मल नहीं है। हमने तो धारावाहिक में भी ऐसे सीन्स हमारे दिखाए गए हैं जो कि मैं नहीं मानती वो सत्य होंगे, कि हमारे देवी देवताओं को भी गुस्सा करते हुए दिखाया है, जो मेरा मानना है कि वो सत्य नहीं है। वहाँ कहीं ना कहीं कोई मिक्सिंग की गई है, क्योंकि देवी देवता भी अगर गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो हम मनुष्य होकर अगर गुस्सा कर लेते हैं तो क्या ही बड़ी बात है। लेकिन वास्तविकता यही है कि वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, भगवान कभी गुस्सा नहीं होते। अगर वो गुस्सा होते तो गुस्से को कभी भी नेगेटिव टर्म या फिर नेगेटिव साइड में नहीं लिया जाता।
1: बिल्कुल सही बात।
2: तो हम वाकई में पॉजिटिव रह सकते हैं और बिना टॉक्सिक हुए अपने कामों को बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे को ये देखना होगा कि मैक्सिमम मैं कौन से लेवल पे रहता हूँ। मैक्सिमम जो मेरा सर्कल है या जो भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ या जो भी मैं खा रहा हूँ या जहाँ भी मैं बैठा हूँ, वो पॉजिटिव है या नहीं।
1: बिल्कुल।
2: जो मैक्सिमम होगा वो उसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। आप दो बच्चे हैं घर में, एक को आप गुरुकुल में रखिए या साधुओं संतों के बीच में रखिए, और एक को जो नॉर्मल जो आज का है माहौल उसमें रखिए। डीजे भी है, सब कुछ है, बार है, डिस्को है, स्कूल है, लाइफ है, सब कुछ है, और एक को वहाँ जंगलों में रखिए जहाँ पर साधु संत रहते हैं। बहुत बड़ा चेंज आप देखेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: जितना ही वो शांत होगा यहाँ वाला, उतना ही हाइपर होगा। वो जितना ही स्लो है उतना ही फास्ट, लेकिन जितना ही स्लो का मतलब स्लो नहीं कहूंगी, जितना ही स्लो होने के कारण उसकी जो क्षमता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्षमता है, यहाँ उसमें वो जीरो होगा। और अगर थोड़े बहुत नंबर मिल भी जाए तो 10-5 ही मिलेंगे, यानी उसका अगर उसके अंदर पॉजिटिविटी है तो 10%, अगर उसके अंदर सहन शक्ति है तो 1%। तो इस तरीके से हर चीज अगर हम देखते हैं तो वही बच्चे हैं, वही पेरेंट्स हैं, लेकिन आसपास के माहौल से बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो अपना माहौल बदलिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और उसके बाद अपने जीवन में देखिए तो बहुत बड़े चेंजेस आएंगे।
1: बिल्कुल सही बात है। ज्योति जी, लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
3: मेरा यही है कि किसी को भी अगर समझना है या समझाना है तो सबसे पहले उनके मन के भाव को समझने की कोशिश करें। अपने मन को शांत करके पहले उनको सुने वो क्या कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद ही उनके मन को जब दिशा बदलेगी तभी उनकी दशा भी बदलेगी, तभी वो पॉजिटिव हो पाएंगे। तुरंत अपने अनुभव या अपनी चीज़ें शेयर नहीं करें, उनके आगे थोपे नहीं किसी के ऊपर, हर एक को अपनी लाइफ के हिसाब से उनको उनके तरीके से ही दें। अगर बच्चा है तो बच्चे को बच्चे की तरीके से ही चीज दी जाएगी। अगर हम सोचे कि बुजुर्गों की तरह दे दे तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर उनके मन के हिसाब से चीजें दी जाएंगी तो हर एक सिचुएशन को संभालना बहुत इजी हो जाएगा।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: आज की डिस्कशन से एक बात क्लियर है, पॉजिटिविटी तब तक हेल्दी है जब तक वो हमारे इमोशंस को डिनाई नहीं करती। अपनी फीलिंग्स को समझना, एक्सेप्ट करना और प्रोसेस करना ये वीकनेस नहीं, इमोशनल मैच्योरिटी है। बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी का दिल से शुक्रिया इस इनसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे थे जस्ट टॉक अबाउट इट, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: शाम जब होती है ना, फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि बस अब फटाफट से घर पहुंच जाए, मगर फिर वो घर का रास्ता पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा लंबा लगने लगता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हो आप सब? बस मैं ये बताने आया था कि मैं आ गया हूँ एंड अभी खूब सारे बढ़िया बढ़िया वाले गाने चला रहा हूँ आप लोगों के लिए। एंड हाँ, देखो एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग ट्रैफिक में कहीं पर फंसे हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। नंबर है जी मेरा 9654896896, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना

एक बात सच सच बताना कि क्या आप लोगों को भी अभी तक अपने स्कूल के दिनों की याद आती है? क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा आती है। अगर अभी इस टाइम मुझे कोई स्कूल का बच्चा सुन रहा है ना, तो बच्चों मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, एंजॉय कर लो जितना कर सकते हो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आज आप सभी से ढेर सारी बातें करने के लिए फिर से आ चुका हूं। और मेरा जो ये शो है पूरे 3 घंटे का होता है, 5 से 8 आप लोगों के साथ आता हूं डेली, या तो डेली बात करते हैं मंडे टू फ्राइडे, एंड इसके बीच में दिल्ली से लेके फरीदाबाद तक, फरीदाबाद से लेके पूरी दुनिया भर तक। और आज मैं बात करना चाहता हूँ रिलेटेबल बातें, मतलब जो आप लोगों को लगेगा हाँ यार ये तो हमारे साथ भी होता है, स्कूल की यादें, दिल्ली के ट्रैफिक, फरीदाबाद के ट्रैफिक, फरीदाबाद का बेस्ट स्पॉट जहाँ पर हम लोग बचपन से खाने जाते कुछ ना कुछ। तो काफ़ी सारी ऐसी दुकानें हैं फरीदाबाद में जहाँ हम लोग कभी ना कभी बचपन में गए थे, और फिर अभी भी हम लोगों को वहाँ का टेस्ट याद है, और अब भी जाते हैं ना जब तो टेस्ट सिमिलर ही मिलता है, ऐसा होता है ना सभी के साथ। और हाँ, एक और चीज़ जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ वो ये है, सैलरी सबकी आती है, टिकती किसी की नहीं है क्योंकि देखो हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, है कि नहीं। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, और इसी बीच अगर आप लोगों को मुझसे बातें करनी है तो नंबर है जी मेरा 9654896।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो, सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो
3: ladies and gentlemen, you are not

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

अंग्रेज आए थे इंडिया में और वो इंडिया में आकर एक टेक्नोलॉजी कभी भी वापस नहीं ले जा पाए और वो लोग परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, और वो टेक्नोलॉजी थी जुगाड़। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। मैं अभी जस्ट बैठे बैठे सोच रहा था कि हमारे पास में कुछ दिक्कत हो गई थी, मतलब अपने घर के आसपास, तो हम लोगों ने सोचा इस पर क्या किया जाए, और एक अंकल आए, उन्होंने कुछ जुगाड़ किया, उसमें हो गया ठीक, मतलब हम लोगों के पैसे भी बच गए, सब कुछ बच गया। तो ये चीज़ होती है जुगाड़, एंड ये वर्ड कहाँ से आया मुझे कुछ समझ नहीं आता, मतलब एक जुगाड़ नाम का शब्द आया, और मैं कह रहा हूँ इंडिया का असली सुपर पावर है जुगाड़, क्योंकि जुगाड़ जैसे सुनते हैं ना तो फिर हमें लगता है कि हाँ एक क्रिएटिव सॉल्यूशन है। क्योंकि देखो, चाहे ऑफिस हो या फिर हो घर या फिर हो ट्रैफिक, हम हर जगह जुगाड़ लगा लेते हैं, और इस पे आप लोगों के पास भी बहुत सारी कहानियाँ होंगी। क्योंकि ऐसा होता है, देखो एक लैम्बोर्गिनी का शोरूम था जहाँ पर गाड़ी बाहर नहीं आ पा रही थी, जस्ट बिकॉज नया नया

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात करते हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

0: campeão, põe de haver taca já em pina.
1: चल अर्जुन शुरू हो जा।
2: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
1: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
2: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
1: इरशाद
2: अरे आगे खाली हो जाएगी।
1: क्या
2: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
1: कौन है?
2: रोडवेज वाले।
1: ओके ओके
2: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
1: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
2: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ
2: आगे सुनो।
1: सुनाओ।
2: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
1: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
2: अरे ग्लास तो पीती जा सुन।

शुरुआत में, मतलब आज के दिन की शुरुआत में जब मैं आया था तो मैंने सभी से एक सवाल किया था, और जो भी नए नए लिसनर्स मेरे साथ अभी जुड़े हैं उनसे भी सवाल कर लेता हूँ कि क्या आप लोगों को कभी स्कूल की याद नहीं आती? नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज आप सभी से स्कूल के बारे में भी बात कर ली जाए। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड स्कूल की बातें करते हैं ना तो ऑलमोस्ट सबकी मेमोरी कॉमन हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। फर्स्ट क्रश मानो या मत मानो, स्कूल में सबको एक बार तो ठीक है पढ़ाई करने जाते थे, बट हाँ हो जाता है, नज़रें चार हो जाती थी। खैर उसको भी साइड कर देते हैं। एनुअल फंक्शन, दिस वाज द मेन फंक्शन जिसकी हम सबको इंतज़ार रहता था, एंड उसमें परफॉर्मेंसेज होती थी बहुत सारी, एंड पीटी पीरियड और साथ में गेम्स पीरियड, हफ्ते में एक गेम्स पीरियड मिलता था। और बता दूं वो भी अगर कोई मैथ्स की टीचर आके ले लेती थी ना, जब तब इतना ज़्यादा बुरा लगता था और गुस्सा लगाता था। खैर गुस्सा तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, बट स्टिल एंड पनिशमेंट या फिर बोर्ड एग्जाम, वो सारी स्टोरीज नॉस्टैल्जिया लेकर आ जाती है, नॉस्टैल्जिक कर देती है हम सबको। तो आप लोग बताइए आप लोगों को कौन कौन सी यादें मतलब वापस याद आती है स्कूल के दिनों की, क्योंकि मुझे तो वो याद आता है, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता हम लोग पानी पीने के लिए भी पूछते थे क्या टीचर से। दिस इज़ नॉट डन यार, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान का हक है, वो पूछना क्या है उसमें, पियो आराम से पियो। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने चलाते रहूँगा, और उन्हीं में से जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है इसको थोड़ा सा वॉल्यूम हाई कर दी जाए।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: पता नहीं, मैं तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचे। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हमारे जमाने में ये होता था, हमारे जमाने की फिल्में बहुत अच्छी हुआ करती थी, हमारे जमाने के गाने बहुत अच्छे हुआ करते थे। नो डाउट गाने तो सच में बहुत अच्छे थे, मैं ये बात कर रहा हूँ हमारे फादर की, मदर की, या फिर हमारे पेरेंट्स की लैंग्वेज। सबके डायलॉग्स यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल तो नहीं कहेंगे बट हाँ इंडियन जरूर होते हैं। इंडिया में सब पेरेंट्स के डायलॉग सेम है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड एंड एंड एंड एक डायलॉग जो कि हर मम्मी जरूर बोलती है, फोन को आग लग जाए या फिर आग लग जाए तेरे फोन को, और इसके अलावा फोन छोड़ दो और पढ़ाई करो। ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, मतलब उस टाइम हमारे पास वो वाले फोन नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं थे, बट स्टिल सुनने को बहुत ज्यादा मिलता था कि फोन छोड़ दे, इस फोन को आग लग जाए, ये और वो। और फिर हमारे जमाने में ये होता था, हमारे जमाने में इतने रुपए में चीजें मिलती थी। फिर मेरे मन में एक सवाल आता है कि आप लोगों ने अपने जमाने में ये क्यों नहीं किया, मतलब कुछ शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया जाता तो आज क्या ही हो जाता उसका, है कि नहीं। चलिए उसको भी अभी साइड में कर देते हैं। और एक डायलॉग तो सबको सुनने में जरूर मिलता होगा, जब भी आप लोग अपने कमरे को फैला दो तो एक डायलॉग आता है, घर है ये होटल नहीं है। और ये डायलॉग तब भी आता है जब आप घर पे लेट आओ, घर है ये होटल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो कि हर फैमिली में सुनने को मिलते हैं पेरेंट्स के द्वारा। बताइएगा जरूर अगर आपके पास भी कोई डायलॉग्स है तो। अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, मगर उन्हीं में से बादशाह पाजी की आवाज में गाना है, मतलब उनके साथ एक लेडी भी है। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: मेरे।
1: एक मैसेज आता है फोन में और उससे हमारी दिन भर की टेंशन या फिर मैं बोलूं पूरे महीने भर की टेंशन खत्म हो जाती है। और वो मैसेज बहुत सारे लोगों के पास आता है और वो मैसेज होता है, दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। फिर उसके बाद जो चेहरे पे खुशी होती है वो तो शायद सभी लोग इससे वाकिफ होंगे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड जो मैं ये बात बोल रहा हूँ ये तो आप लोग मान ही रहे होंगे कि हाँ, जब सैलरी आती है तो सबका दिन खुश हो जाता है, मुंह खुश हो जाता है, मूड खुश हो जाता है, मगर सैलरी टिकती कितने दिन है, टिकेगी कैसे, मिलती जो कम है। खैर बता दूं आपको, मंथ के स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच का जो सफ़र होता है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। सैलरी क्रेडिट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, गर्लफ्रेंड को कुछ चाहिए वो दिला देते हैं, घर वालों को कुछ चाहिए वो दिला देते हैं, खुले हाथ का खर्चा, हम तो राजा हैं जी। और फिर धीरे धीरे आता है मंथ एंड। मंथ एंड में अगर गलती से भी अकाउंट बैलेंस देख लो तो फिर एक दर्द सा उठता है सीने में, और वो दर्द ऐसा होता है कि यार अब बस चलाने हैं 5-6 दिन और वो कैसे जैसे चला लेंगे। बट मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, देखो अगर आप लोग सैलरी के ऊपर ही डिपेंडेंट है और सिंगल सैलरी के ऊपर अगर डिपेंडेंट है तो फिर दिक्कत है कहीं ना कहीं। आप लोगों को अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने पड़ेंगे, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप दिल्ली एनसीआर में अपने जीवन के 70 साल बिताते हैं और फिर उसके बाद आपके पास गाड़ी भी है, तो समझ लीजिए आपने कम से कम 5 से 6 साल सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक में बिताए हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। देखो, वीकेंड हो और फिर उसके बाद घर वालों में से किसी की जिद हो जाए कि चलो दिल्ली चलते घूमने के लिए, या फिर कोई फ्रेंड बोल दे कि दिल्ली चलते घूमने के लिए, वो भी गाड़ी से, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, गाड़ी से जाना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगता है कि इट्स नॉट बेरेबल। किसी भी टाइम चले जाओ, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश में चले जाओ, तो फिर तो आप कम से कम 7 से 8 घंटे मान के चलो, हाँ ये तो ट्रैफिक में ही हो जाएगा। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोदी के साथ। ट्रैफिक एक ऐसी चीज़ है ना जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस डाल देती है, बार बार कंटिन्यूसली हॉन्किंग करते हैं लोग, पै पै पै पै, इतना सरदर्द हो जाता है ना इस चीज़ से। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। खैर, ट्रैफिक में फंसना एनसीआर वालों की डेली लाइफ का पार्ट है, हम सभी का, फरीदाबाद वालों के लिए भी डेली लाइफ का पार्ट है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, काफ़ी बार ट्रैफिक में फंसना ना फनी भी हो जाता है। ऐसे जैसे कि आपका कोई दोस्त है, उसने बहुत सारा पानी पी लिया, अब उसको नेचर का कॉल आया है और अब उसको जाना है, बट ट्रैफिक में आप लोग फंसे हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोग आज तक सबसे ज़्यादा वियर्ड जगह पे कहाँ पे फंसे हैं, मतलब ट्रैफिक में ही। मैं अगर एक स्टोरी बताऊँ मेरी खुद की, साल 2024 की बरसात में दिल्ली गया था, 5 बजे निकला था दिल्ली से वापस, और वो भी ज़्यादा दूर नहीं, साकेत से 5 बजे निकला था और मैं 10:30 बजे घर पहुंचा हूं फरीदाबाद में। सोचिए 5.5 घंटे इतनी देर में तो मैं नैनीताल पहुंचा था। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे रेडियो महारानी के नाम से मिल जाएंगे। और अभी फिलहाल आप सभी के लिए एक AI वर्जन वाला गाना, ओनली ऑन 89.6।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

आज ना ऑफिस में ऐसे ही सब लोग बैठे हुए थे एंड एकदम से डिस्कशन चालू हो गया कि जब हमारे पास फोन नहीं हुआ करते थे ना, वो टाइम सबसे ज्यादा बेस्ट था। और मेरे ख्याल से इस बात से सभी लोग एग्री करेंगे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास भले ही फोन नहीं था, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, बट सबके पास टाइम बहुत ज्यादा हुआ करता था। बातें करते थे लोग, खूब सारी बातें करते थे, और फिर उसके बाद जब शाम को लाइट चले जाती थी, फिर घर के बाहर बैठ के आंगन में बैठ के बातें करते थे। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। हम सभी ने 90 का दौर देखा है, 2000 का दौर देखा है, 2010 का दौर देखा है, हमने 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G होते हुए देखा है। मगर पुराने जो कार्टून थे ना, वो मजा आज के कार्टून में है ही नहीं। और फिर उस टाइम एक वो फोन था हमारे पास नोकिया वाला, जिसमें वो सांप की गेम हुआ करती थी, वो तो नेवर एंडिंग थी सांप वाली गेम। और उसके साथ साथ वो फोन भी नेवर एंडिंग था, क्यों? क्योंकि टूटता ही नहीं था। छत से गिर जाए कुछ नहीं होता था उसको। एंड उसके अलावा SMS के पैक आते थे, याद है आप लोगों को? एक स्क्रैच कार्ड आता था, उस पर स्क्रैच करते थे, फिर उसका कोड डालना पड़ता था, तब जाके आपके फोन में रिचार्ज होता था। ये सारी चीजें याद करते हैं ना हम लोग, तो नॉस्टैल्जिक फील करते हैं। MP3 प्लेयर्स हुआ करते थे सबके पास, किसी न किसी के पास तो होता था, वॉकमैन हुआ करते थे, और उस टाइम फेसबुक नहीं था बट ऑर्कुट नाम की एक चीज थी, उसमें स्क्रैपबुक हुआ करती थी, याद है ये सारी चीजें? तो ये सब चीजें जब याद करते हैं ना, तो बहुत सारी मतलब पुरानी यादें ताजा हो जाती है। और वो बचपन का स्नैक चीटोस, कैसे भूल सकते हैं उसको। चलिए अभी हम लोग ये पुरानी चीजें याद कर रहे हैं, मगर अभी गाना नया वाला चलाऊंगा आप सभी के लिए। जो ये बैकग्राउंड में बज रहा है, इसको थोड़ा सा लाउड कर दिया जाए। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

आमद सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

क्या आप लोग भी फैमिली के किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हो? क्योंकि मैं तो जुड़ा हुआ हूँ और उसमें सुबह सुबह मैसेजेस आते हैं, फोटोज आती हैं, अपनी गुड मॉर्निंग वाली फोटोज आएगी जिसमें एक चाय का कप होगा, थोड़े से फूल होंगे, एंड ये कंटिन्यूसली होता ही है। एंड सोसाइटी का जो ग्रुप है ना, जहाँ पर डिस्कशन होती है कि सोसाइटी में ये चीज़ साफ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, RWA का जो ग्रुप है, वहाँ पर भी इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे मैसेजेस भेज देते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। आई डोंट नो कौन सा डोपामीन मिलता है इन अंकलों को जो सुबह सुबह अंकल आंटी गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजते हैं। नो ऑफेंस, किसी को कुछ नहीं कह रहा मैं, बट देखो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है विशिंग करने का। तो कुछ लोग गुड मॉर्निंग लिखते हैं, कुछ लोग फोटोज भेजते हैं, कुछ लोग फॉरवर्ड कर देते हैं मैसेजेस को। और फैमिली गॉसिप, फैमिली जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें तो महासंग्राम हो जाता है कभी कभार क्योंकि अगर आपने कोई फोटो डाल दी और फिर उसके बाद लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत सुंदर, अति सुंदर, कुछ भी, मतलब आप अचीवमेंट डालते हो तब तो फिर लाइक्स पे लाइक्स होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें ना व्हाट्सएप ग्रुप तक ही ठीक है, क्योंकि जब सामने मिलते हैं ना तो फिर कौन किसकी सुनता है। बच्चे अलग चिल्ला रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, जैसे अगर मान लेते हैं फैमिली गैदरिंग हो रही है उसमें जो बड़े लोग हैं वो अलग ही लेवल पे चिल्ला रहे होते हैं। तो फैमिली ग्रुप्स में होने वाली जितनी भी फनी सिचुएशंस है वो मेरे ख्याल से कोई भी और चीज़ रिप्लेस ही नहीं कर सकती। मानते हो कि नहीं? अगर आप मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो मैं मनवा दूंगा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए लवाजकर मूवी से ही गाना। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

अगर आप फरीदाबाद में ही पले बड़े हैं तो फिर आप लोग फरीदाबाद में कुछ कुछ ऐसी जगह जानते होंगे जो कि कोई और जानता ही नहीं है, और मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल खाने पीने की। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई ना कोई दुकान खुलती हुई देखी होगी, और आज उस दुकान की कम से कम 3 से 4 ब्रांचेस बन गई है कि नहीं। और मैं बात करना चाहता हूँ आज कुछ खानों की दुकानों के बारे में। आप जब ओल्ड फरीदाबाद की तरफ जाते हो तो वहाँ पर ना एक वो सब्जी मिलती है बहुत टेस्टी सी। अब मुझे उस सब्जी का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, बट वो प्याज की सब्जी होती है, वो छोटे छोटे प्याज होते हैं ना उससे सब्जी बनती है, आलू प्याज वाली सब्जी होती है वो, और बहुत टेस्टी होती है। एंड ऐसा ही सेम टू सेम ओल्ड में एक फ्रूट चाट मिलता है, और साथ में गुड्डू कचौड़ी को कौन भूल सकता है तो और एक पकोड़े वाला भी है ओल्ड फरीदाबाद में, वो भी अमेजिंग है। मेरे को किसी के नाम नहीं पता, अगर आप लोगों को नाम पता है ना आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और कुछ दुकानें ऐसी हैं जैसे कि सेक्टर 7-10 की अगर मैं बात करूँ, 7-10 की मार्केट, जो 7-10 का डिवाइडिंग रोड है, तो वहाँ पर बहुत सालों पहले, मुझे आज भी याद है बचपन में पापा लेके जाया करते थे, वहाँ पर एक फलूदा वाला हुआ करता था, तो उस पर इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी। आई डोंट नो अब वो है भी या फिर नहीं, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर वाली शॉप थी वो। तो अगर आप लोगों ने भी वो ट्राई किया है तो शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं किस दुकान की बात कर रहा हूँ। और अगर बात करें NIT की, तो NIT में लवली चाट भंडार किसको नहीं पता, NIT में संजय छोले भटूरे किसको नहीं पता, या फिर जग्गी स्वीट हाउस किसको नहीं पता, सबको पता है। और इनका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो आप लोग बताइए आप कौन से एरिया से है और वहाँ का फेमस फूड क्या है। नंबर है जी मेरा 9654896896। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर मैं आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, दिल लगाना मना था। मेरी आवाज में नहीं अच्छा लगेगा, मगर इस वाले आवाज में सच में अच्छा।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट वॉट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

अभी ना मैं बात करना चाहता हूँ फरीदाबाद के बड़खल झील के बारे में। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एक ना छोटे छोटे पौधे उग गए हैं, और इस पौधे को कहते हैं, मतलब नाम नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, इस पौधे को कहते हैं कि ये पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल होती है ना समुद्री जीवों की या फिर पानी के अंदर रहने वाले जीवों की, वो ख़त्म कर देता है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और जो ये छोटे छोटे पौधे से उगे हुए हैं, जो बड़खल झील के ऊपर उग गए हैं पूरे के पूरे, तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये इंडिया के थे ही नहीं, मतलब इंडिया में थे ही नहीं, एक भी नहीं था। मगर अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या हुआ, उन लोगों ने कहीं ट्रैवल किया और उन लोगों को वहाँ पर ये बहुत अच्छा लगा, तो वो एक दाद पीस उठा के ले आए थे। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने दिल्ली के महल के सामने, मतलब दिल्ली में अपने जो भी उनका ऑफिस था उसके सामने उन्होंने पौंड में रखे, और वो पौंड से निकल कर जब वो बढ़ गए पौंड में, तो किसी ने उठा के उसको नदी में फेंक दिया या नाले में फेंक दिया। और फिर उसके बाद तो ये बढ़ते ही चले गए, और ऐसा ही सेम टू सेम अब बड़खल झील में हो चुका है। और मैं आपको बता दूँ, ये इतने ढीठ होते हैं ना कि अगर आप इनको पूरा का पूरा साफ भी कर दोगे, और अगर सिंगल पीस भी रह गया, फिर सिंगल जड़ भी रह गई अगर, तो फिर ये फिर से उग आएंगे, और वो भी बहुत ही तेज़ी के साथ। मैं कह रहा हूँ ऐसे ही तेज़ी के साथ मेरी सैलरी भी बढ़ती जाए तो मज़ा ही ना आ जाएगा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते रहिए, बातें और गाने तो यूँ ही चलते रहेंगे। मगर हाँ, एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप बड़खल की तरफ कभी भी जाते हैं घूमने के लिए, तो एक गुजारिश आप लोगों से करूँगा कि प्लीज़ अपने फरीदाबाद को स्वच्छ रखने में हेल्प कीजिए। हर जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, तो प्लीज़ कूड़ा डस्टबिन में ही डालिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए सिद्धू मूसेवाला की आवाज़ में ये एक अमेजिंग सा गाना सेम बीफ, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, घर का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

जब भी मैं फरीदाबाद के बारे में बात करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा जिम्मेदार नागरिक तो बनना ही पड़ेगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। गाना काफी अमेजिंग था, बट अभी जो मैं बात करना चाहता हूँ फरीदाबाद के बारे में, वो कुछ ऐसी है कि हम लोग जिम्मेदार नागरिक नहीं है। आई नो सुन के बुरा लगेगा, बट ये रियलिटी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो फिर हम लोग अपने शहर को अपना घर नहीं मानते। क्योंकि क्या आप लोग सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त आप लोग पूरे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हो? पूरे मींस पूरे, हाँ नहीं करते होगे आप लोग भी। काफ़ी बार आप भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते होगे, जस्ट बिकॉज कि वो तोड़ रहा है तो मैं भी तोड़ देता हूँ। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। और इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर जब गाड़ी चला रहे हैं, कुछ खाया, राह पर कहाँ जाता है, आप बोलते हो कि डस्टबिन नहीं है तो कहाँ डालें? अरे अपनी गाड़ी में रखिए उसको, जब घर पहुँच जाएंगे, घर पे तो डस्टबिन है ना, तो घर पे डस्टबिन में डालिए। जो कूड़ा कलेक्ट करने के लिए आते हैं वो आएंगे और फिर उसके बाद वो आपसे गार्बेज कलेक्ट करके ले जाएंगे। और इसके अलावा काफ़ी बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि सड़क किनारे कोई इंसान पेड़ों को पानी दे रहा होता है। गलत काम है, सबसे ज़्यादा गलत काम है वो, जो कि लोग मानते ही नहीं है। ऑल दो मैं आप लोगों से बात करूं तो मैं भी ऐसी इनमें से कुछ ना कुछ हरकत मैं भी कर देता हूं। कभी कर दिया होगा मैंने भी गलती से कि गाड़ी से रैपर बाहर फेंक दिया होगा, बट अब मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ये सब हरकत ना हो दोबारा। और अभी मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लोग में से कोई भी ये सब हरकतें नहीं करता तो वेल एंड गुड है, आप लोग एक जिम्मेदार नागरिक हैं। और अगर जो भी सुन रहा है उसने ऐसी कोई भी हरकत करी है या फिर कोई भी एक्स वाई जेड कुछ करा है, तो प्लीज़ बस यही गुजारिश है कि अपने फरीदाबाद को अपना घर समझिए और उसको और ज़्यादा साफ़ सुथरा बनाने में हेल्प कीजिए। और अभी फ़िलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे। उन्हीं में से ये गाना बोहेमिया की आवाज़ में मिक्स मैशअप, ओनली ऑन 89.6 FM। कुछ हटके।

0: बॉयफ्रेंड हूं इसलिए गुलाम हूं।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

नीतू झट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

शाम को ना एक चीज तो सबके साथ होती है और वो है इस टाइम जोरों की भूख लग जाती है, चाहे दिन में आप लोगों ने कितना ही खाना क्यों ना खाया हो। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड आज से कुछ टाइम पहले मैं आप सभी के लिए हमेशा लेकर आता था कोई ना कोई बातें हेल्थ वाली, मगर अभी हेल्थ की बात नहीं करने आया हूं। अभी मैं ये बोलना चाहता हूं, देखो अभी इस टाइम घर जा रहे हो तो फिर आप लोग भी गाड़ी सड़ी की सीट भी ले सकते हैं और वहां से ले सकते हैं कुछ खाने के लिए अच्छा सा, और वहां से कुछ अच्छा सा खाने के लिए लीजिएगा जो कि हेल्दी भी हो एंड फ्राइड भी होगा, तो वंस इन अ टाइम वंस इन अ मंथ चलता है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए और मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से फिर से कब, सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। रोजी तो आता हूँ और अब आएगी वापस गीत विद इश्कबाजियां, खूब सारी गाने, प्यार भरी बातें, सब कुछ लेकर आएगी, मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना चला रहा हूँ जो कि ट्रेंडिंग था साल 2022 में। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
3: सुन भाई सुरेंद्र।
4: हाँ भाई सुरेंद्र।
3: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
4: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, घर का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

0: ब्यूटीफुल
1: और लड़की ब्यूटीफुल कर गई चूल।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

कितनी अजीब चीज है ना ये इश्क। कभी यही इश्क दुनिया की हमें सबसे खूबसूरत जगह पर ले जाता है और कभी यही इश्क हमें हमारी तन्हाइयों से मिलवा देता है। इश्क में सब कुछ बहुत गहरा हो जाता है, खुशी भी है, याद भी है और इंतजार भी है। हेलो हाय, आप सुन रहे हैं शो इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात हो चुकी है और घड़ी में 8 बज चुके हैं। दिन की भागदौड़ अब धीरे धीरे थम रही है, सड़कें थोड़ी शांत हो रही हैं और दिल अब अपने असली ख्यालों की तरफ लौटने लगा है, क्योंकि रात का समय ऐसा ही होता है। दिन में हम जितना भी खुद को बिजी रख लें, रात को कुछ यादें, कुछ चेहरे, कुछ बातें खामोशी से हमारे पास आकर खड़े हो जाते हैं और शायद यही वजह है रात का ये समय इश्क को समझने के लिए सबसे सही होता है। तो चलिए इसी रात, इसी खामोशी और इन्हीं एहसासों के साथ शुरू करते हैं इश्क बाजियां का पहला सेगमेंट इश्क शायराना, जहां हम बात करते हैं उन शायरों की जिन्होंने मोहब्बत को सिर्फ महसूस नहीं किया बल्कि उसे शब्दों में ऐसे ढाला कि उनकी शायरी आज भी दिल तक सीधा पहुंच जाती है। और आज इश्क शायराना में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शायरा की जिनकी शायरी में मोहब्बत की नरमी भी है और जुदाई की चुप्पी भी। मैं बात कर रही हूँ परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो इश्क को किसी कहानी की तरह नहीं लिखती, वो इश्क को जिंदगी की तरह लिखती है। जहाँ सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता, जहाँ लोग हमेशा साथ नहीं रहते, जहाँ कभी कभी मोहब्बत बस एक याद बनकर रह जाती है। उनकी गजल है जिसकी शुरुआत ही इतनी सच्ची है कि सुनने को लगता है जैसे किसी ने दिल की बात कह दी हो। वो लिखती है, अब भला छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते। सोचिए जब दिल किसी के पास रह जाए तो इंसान कहीं और जाकर भी क्या करेगा। रास्ते चाहे कितने भी खुले क्यों ना हो, सफर तभी खूबसूरत लगता है जब कोई साथ चलने वाला हो। और अगर वही इंसान हमारे साथ ना हो तो फिर सच में शाम के वक्त सफर करने का मतलब क्या रह जाता है। और आगे लिखती है, तेरी मसरूफियतें जानते थे, अपने आने की खबर क्या करते। कितना गहरा एहसास है इसमें। कभी कभी हम किसी की जिंदगी में इतने धीरे धीरे शामिल हो जाते हैं कि हमें लगता है शायद हमारी मौजूदगी भी मायने रखती है, लेकिन फिर वही एहसास होता है कि सामने वाला इंसान हमारी नहीं अपनी ही दुनिया में मसरूफ है। और तब दिल चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लेता है, ना कोई शिकायत है ना कोई सवाल है, बस एक खामोशी। और शायद इसी खामोशी को परवीन शाकिर ने अपने एक और शेर में बहुत ही खूबसूरती से कहा है। वो मुसाफिर ही खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। मतलब अगर कोई इंसान रुकने के लिए बना ही नहीं है, अगर वो एक मुसाफिर था तो फिर हम अपनी मोहब्बत की छांव फैलाकर भी उसे रोक कैसे लेते। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग बस मुसाफिर होते हैं, वो आते हैं हमारी दुनिया में, कुछ यादें छोड़ जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, और हम काफी देर तक उन्हीं रास्तों को देखते रहते हैं जहां से वो गुजरा था। परवीन शाकिर की शायरी की खूबसूरती यही है, वो मोहब्बत को सिर्फ पाने की बात नहीं करती, वो मोहब्बत के बाद बच जाने वाली खामोशी की भी बात करती हैं। और शायद इसीलिए उनकी शायरी सुनते हुए हर इंसान को कहीं ना कहीं अपनी कहानी नजर आ ही जाती है। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। एक गाना सुनते हैं और वापस लौटेंगे इसी इश्क शायराना के सफर में परवीन शाकिर की कुछ और बातों के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

और ये था बहुत ही खूबसूरत गाना। रात की खामोशी में कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस सुनाई नहीं देते बल्कि महसूस होते हैं। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं हूं आपके साथ इश्क वाली गीत। और जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है वैसे दिल भी थोड़ा थोड़ा और सच्चा होता जा रहा है। दिन में हम बहुत सारी बातें छुपा लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, खुद को बिजी रख लेते हैं, लेकिन रात को अक्सर वो ख्याल वापस आ जाते हैं जिनसे हम दिन भर बचते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि इश्क को समझने के लिए ये समय बहुत खूबसूरत है। इसलिए इश्क बाजियां के पहले सेगमेंट इश्क शायराना में मैं बात कर रही हूँ परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की अगली नज्म पर बढ़ते हैं जहाँ वो मोहब्बत को किसी बड़े दावे के साथ नहीं लिखती हैं। वो मोहब्बत को छोटी छोटी यादों, छोटी छोटी मुलाकातों और दिल की हल्की सी कसक में ढूंढती हैं। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत गजल है जिसका पहला ही शेर है, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। कितनी सच्ची बात है, कभी कभी जिंदगी में खुशी और उदासी एक साथ होती है। आप मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी कमी रह जाती है, क्योंकि कुछ लोग हमारी खुशी का हिस्सा बन जाते हैं और जब वो साथ नहीं होते तो खुशी भी थोड़ी अधूरी सी लगती है। और वो आगे लिखती है, मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। ये शेर सुनकर लगता है जैसे किसी ने दिल की थकान लिख दी हो। जब हम किसी को बहुत चाह लेते हैं और वो हमें नहीं मिलता तो एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान दुआ करना भी छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद किस्मत में अब वो नाम नहीं है। लेकिन परवीन शाकिर की शायरी की यही खूबसूरती है, वो मोहब्बत को शिकायत नहीं बनने देती, वो उसे एक याद बना देती है। ऐसी याद जिसमें कभी चांद की रोशनी होती है, कभी ठंडी हवा और कभी दिल की हल्की सी कसक। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

खूबसूरत गाने के साथ फिर से स्वागत है। कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस कानों तक नहीं रुकते, सीधा दिल तक उतर जाते हैं। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। हम बात कर रहे हैं परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी में सिर्फ इश्क मिल जाने की खुशी नहीं है, उसमें बिछड़ जाने की सच्चाई भी है और याद बनकर रह जाने का दर्द भी है। तो उनका एक और शेर मैं आपको सुनाती हूँ। वो लिखती है, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा। कितनी खूबसूरत बात है इसमें। कुछ लोग सच में खुशबू की तरह होते हैं, वो हमारी जिंदगी में आते हैं और फिर हवाओं में बिखर जाते हैं। लेकिन जो इंसान उनसे मोहब्बत कर बैठता है, उसके लिए सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ गया, सवाल ये होता है कि अब वो खुद किधर जाए। वो आगे लिखती हैं, हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी रगे जा में उतर जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि दिल पर लगा दर्द बस थोड़ा सा वक्त मांगता है, थोड़े दिन गुजरेंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिल पर नहीं लगते बल्कि हमारी रूह में उतर जाते हैं, और फिर इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उनकी याद कहीं ना कहीं हमारे साथ चलती रहती है। और फिर वो आगे लिखती है, वो जब आएगा तो फिर उसकी रिफाकत के लिए मौसम गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा। यानी दिल कहीं ना कहीं अब भी उम्मीद लगाए बैठा है कि अगर वो इंसान कभी लौट आया तो जिंदगी फिर से खूबसूरत हो जाएगी। कभी कभी इश्क यादों से ज्यादा उम्मीदों पर जिंदा रहता है, और शायद इसीलिए इंसान पूरी तरह अपने पसंदीदा इंसान को भूल नहीं पाता है। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। हम गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: सब को सब नहीं मिल।
1: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
2: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना, एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है इश्क शायराना। हम बात कर रहे हैं परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे खूबसूरत बात ये ही है कि वो मोहब्बत को सिर्फ शुरुआत से नहीं देखती, वो उसके बाद की खामोशी भी लिखती है। कभी जिंदगी में एक ऐसा मौसम आता है जब सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे अचानक जिंदगी में बहुत गुलाब खिल गए हों, लेकिन वही मौसम जब गुजर जाता है तो उसकी याद भी धीरे धीरे दर्द बन जाती है। तो एक शेर है, सुनाती हूँ। गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। यानी जो पल कभी बहुत खूबसूरत थे वही याद बनकर कभी कभी दिल को तकलीफ देते हैं, क्योंकि सच ये है कि इंसान यादों से भाग नहीं सकता, वो चाहकर भी कुछ चेहरों को, कुछ बातों को, कुछ लम्हों को भुला नहीं पाता। और फिर वो लिखती है, राख के ढेर पर अब रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। ये शेर सुनकर लगता है जैसे किसी ने टूटे हुए सपनों की तस्वीर खींचती हो। हम अपने सपनों के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि जब वो टूटते हैं तो सिर्फ सपना नहीं टूटता, हमारा एक हिस्सा भी टूट जाता है। लेकिन जिंदगी की अजीब बात यही है कि इंसान फिर भी जीता रहता है, वो राग के बीच भी एक नई सुबह ढूंढने की कोशिश करता है। और शायद इसीलिए मोहब्बत चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लोग उससे दूर नहीं भागते, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ खुशी नहीं देती, वो इंसान को थोड़ा और गहरा बना देती है, मैच्योर बना देती है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजिया। यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज की सेफ्टी टिप्स सुन लो, वरना आपकी लाइफ बन जाएगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी रील। रूल नंबर वन, जियो टैग मत लगाओ, क्योंकि ये इंस्टा है, जोमैटो नहीं। पासवर्ड यूनिक रखो, बर्थडे या लवर का नाम बिल्कुल नहीं, तो हैक होते ही तुम्हारी एस्थेटिक फीड बन जाएगी कॉमेडी कंटेंट। और हाँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी होगी न्यू अकाउंट प्लीज फॉलो बैक। और भाई, स्ट्रेंजर्स को पिक्स मत भेजना, ये कोई शादी.com का फास्ट ट्रैक थोड़ी ना है। अननोन लिंक्स, उस पे क्लिक करना मतलब वायरस को चाय पर बुलाना। तो इंस्टा यूज करो, मस्त रहो, पर सिक्योरिटी के साथ, वरना वायरल तो हो जाओगे लेकिन ऑरा माइनस हो जाएगा।

यानी कि एक इंसान अगर साथ हो जाए तो ये पूरा जहां साथ हो जाए। इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। परवीन शाकिब की बात हो रही है, उनकी शायरी बहुत खूबसूरत है, ये तो मानना पड़ेगा कि वो इश्क को सिर्फ कहानी नहीं बनाती बल्कि उसे याद बना देती हैं। ऐसी याद जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। कभी कभी हम सोचते हैं कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ पीछे छूट जाता है, लेकिन सच ये है कुछ रिश्ते जिंदगी से नहीं जाते, बस दिल के किसी कोने में चुपचाप रख दिए जाते हैं। तो उनका अगला शेर है, याद तो होंगी वो बातें तुझे अब भी, लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। कितनी गहरी बात है इसमें। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोज याद नहीं करते, लेकिन हमें पता होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी मौजूद हैं, जैसे अलमारी में रखी कोई पुरानी किताब जिसे हम बार बार नहीं खोलते, लेकिन उसकी मौजूदगी हमें हमेशा पता होती है। और शायद यही वजह है कि मोहब्बत कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वो बस अपनी जगह बदल देती है। पहले वो किसी इंसान में होती है और फिर धीरे धीरे वो यादों में रहने लगती है। तो अगला शेर है, हिजर की शब मेरी तन्हाई पर दस्तक देगी, तेरी खुशबुएं मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। यानी जुदाई की रात जब आएगी तो तेरी याद भी आएगी, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराना ख्वाब अचानक दिल में लौट आया हो। और शायद यही इश्क की सबसे गहरी बात है। इश्क हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी इश्क बस एक खुशबू बनकर रह जाता है जो वक्त के साथ हल्की तो हो जाती है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होती। और यही खूबसूरत एहसास के साथ आज के इश्क शायरानों को हम यही विराम देते हैं। मैं हूँ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: आप सुन रहे हैं आरजे गीत को इश्क बाजिया में, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन है, जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहां ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली जी।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या कहा?

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास से सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे

दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, उनको कैसे प्यार हुआ, इसके बारे में बात होगी। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।

रवि साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थीं,

ना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी। और तभी किशोरदा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थी जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोरदा और मधुबाला साथ में थे। लेकिन जब किशोरदा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख, ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है। लेकिन किशोरदा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया। और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: तले।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोरदा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोरदा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहाँ जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है। लेकिन किशोर दा की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपनी हर कस्म को निभाया, मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोर दा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना सुनिए।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो।

पल पल दिल के पास। और इसी गाने के साथ स्वागत है फिर से, शो है इश्कबाजियां और दिल दिया गल्ला लेकर हाजिर हूँ। दिल दिया गल्ला में आपके दिलों की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचानी है, और एक बहुत ही खास से टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। इश्कबाजियां शो है, और कई बार लोग रिश्तों में आ जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते बना लेते हैं, काफी सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पाती है। और लोग कहते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है जो रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो शायद इस बात के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप अपने रिश्ते को ना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। आप समझते हैं सामने वाले को, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आपको समझना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किस तरह से आप अपने रिश्ते को समझ सकते हैं, सामने वाले की रेस्पेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसी बारे में बातें होंगी आज दिल दिया गल्ला में। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्कबाजियां, और गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनो ना। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको रिश्ते और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे रिश्तों में बंध जाते हैं जो उनके लिए आगे चलकर बहुत टॉक्सिक साबित हो जाते हैं। और अक्सर वो लोग घुलते रहते हैं उन्हीं रिश्तों में, ना तो छोड़ पाते हैं उन रिश्तों को और ना ही रह पाते हैं। और कई बातों में लोग पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन कई रिश्तों में लोग आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा रिश्ता टूटना लाजमी है। लेकिन क्या करना चाहिए उस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए, ऐसे में रिश्ते को गहराई से आपको बहुत जरूरी है जानना। कोई इंसान आपके लायक है या नहीं, आप कुछ बातों पर गौर करके ये पता लगा सकते हैं। तो वो कौन सी बातें होने वाली हैं जिन पर आपको गौर करना है? और सबसे पहली बात पता है क्या है? जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि रिश्ते में भले ही प्यार कम हो जाए, केयर कम हो जाए, लेकिन रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए यार। तो इसलिए रिश्ते में ना रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और हर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन आपके मन में अपने पार्टनर और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अगर सम्मान है, इज्जत है, तो आपका रिश्ता ताउम्र चल सकता है। इसीलिए सबसे पहले ख्याल रखिए कि क्या सामने वाला आपकी इज्जत करता है दिल से। आप तो कर रहे हैं, आप तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाले की तरफ से भी वो एफर्ट्स है या नहीं है? और अगर है तो आप समझिए उसे, और इस तरह समझकर आप अपने रिश्ते को बेहतरीन साबित कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, चलिए सुनते हैं इस गाने को। फिल्म भाग मिल्खा भाग से है गाना, बगैर तेरी किए सुनते हैं इस ट्रैक को।

बातें आहिस्ता हैं और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना और आहिस्ता कीजिए बातें। सेगमेंट है दिल दियां गल्लां और बातें चल रही हैं कि किसी भी रिश्ते को गहराई से कैसे समझा जाए। कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव होती है विश्वास। कोई रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे पर आपको पूरी तरह से यकीन हो। अपने रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए और गहराई से जानने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और ये भरोसा ही वो होता है जो एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर पर, आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उस पर भरोसा बनाए रखिए। और अगर सामने वाला आप पर भरोसा करता है ना दिल से, तो आप उसके भरोसे को कभी ना तोड़ें, क्योंकि ये ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया तो जुड़े नहीं जुड़ता है यार। क्योंकि कहा ना, हर रिश्ते की नींव होती है यकीन। और इस तरह से आप किसी को गहराई से जान सकते हैं। फिलहाल वक्त गाने का है, शो इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: ए भाई दरा देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

ऐ काश के हम होश में आने ना पाए। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजिया, मैं हूँ इश्क वाली गीत और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला। बातें चल रही हैं कि कैसे अपने रिश्ते को गहराई से जाने। कहते हैं कि जब किसी से प्यार होता है तो उस पर आप पूरा अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन अधिकार तो जमा रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लीजिएगा कि अधिकार के चक्कर में कहीं आप उसकी आजादी तो नहीं छीन रहे। जिसे भी आप प्यार करते हैं उसे आजादी देना बहुत जरूरी है। अगर वो आपका है तो आप भले ही उसे कितनी आजादी दे दीजिए, वो हमेशा आपका ही रहेगा, हमेशा आपके पास ही लौटेगा। तो इसीलिए रिश्ते में ना आजादी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसकी आजादी छीन लेते हैं तो यकीनन उस रिश्ते का अंत हो ही जाता है एक दिन। और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन गैप होता है ना, उसको भी आप फिल कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने पार्टनर को गहराई से जान सकते हैं, रिश्ते को गहराई से जान सकते हैं। और अपनी बातों को मैं विराम दूंगी क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई है और मैं ऐसे ही खास से टॉपिक के साथ आपसे मिलने वाली हूं, लेकिन अभी दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम।

नौकरानियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

पर है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना।

नसीहत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई डर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM
4: कुछ

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: है अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेटा, न जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।

चक्कर है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ, रात बाकी बात बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बॉलीवुड पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।
2: जीने का तरीका तुझे सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुझे सुनाते हैं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सा है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग,

0: कदी
1: कुड़ी मैनू कदी।
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना च...

0: गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी, किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है। बोली में थोड़ा रियान टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा थी तेरी ना।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मिनी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हुआ झुमका?
1: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
2: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी, सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। श्रीमद् भगवद गीता के 5 खास उपदेश, जिनका पालन करके आप अपने अमूल्य जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली सीख के साथ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे तो भगवद गीता का हर अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का 3रा अध्याय जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, ये गीता का सबसे अनमोल अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता रहता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इसीलिए कर्म करते जाओ, फल की इच्छा को त्याग दो।

विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।

चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण, समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती है, पर धन्य है वो ब्रज भूमि जहां मोहन बैठ करके दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़ करके मथुरा जा रहे थे, सारी गोपियां कृष्ण के रथ के सामने लेट जाती। हे कान्हा, आप और हम विचार करके देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हमारी श्वास हमसे छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा होगी, कैसे जी पाएंगे हम? यही दशा गोपियों की थी। कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर, सब सामने लेट गई। हे उद्धव, हे अक्रूर, तुझे रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से निकाल के लेके जा। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि गोपी क्या बात करती हो तुम, दो दिन के लिए इतना ये सब क्या करने की आवश्यकता है, दो ही दिन की बात है, मैं वापस भी तो आने वाला हूं। पर जो प्रेमी दिल होता है, जो प्रेमी हृदय होता है, वो समझ जाता है कि हाँ ये कह तो रहे हैं कि वापस आएंगे, पर मन कह रहा है कि ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है जितना देख सकती है कृष्ण को देख ले, उसके बाद पता नहीं ये अवसर ये मौका आए न आए। तभी कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपी राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने बताया कि कान्हा आई तो है किंतु कहीं उसको देख करके तुम्हारे मन में कोई ग्लानी ना आ जाए, कहीं तुम अपनी लीला में उसको बाधा न समझने लगो, इसलिए एक पेड़ के पीछे कोने में छुपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहां राधा